गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शबीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी।

Well, Karan Aujla ki awaaz mein the viral track Boyfriend right here on Mirchi Mornings. Good morning, namaste, sat sri akal, vanakkam, assalamu alaikum. Main hoon Afreen, right here on Mirchi Mornings. Aapke saath jud gayi hoon on this beautiful Thursday morning, yaar. Matlab, jab Thursday aata hai na, ke dil mein ek apne aap se khubsurat si feeling aa jati hai, ke haan ji, ek accomplishment wali feeling aati hai, ke alhamdulillah, ke humne ye hafta bahut hi behtareen tarike se guzara hai. Behtareen ho ya na ho, lekin जो हफ्ता है जो हमारा टास्क है वो सारे खत्म होने आ ही गए हैं ऑलमोस्ट एंड नाउ वी ऑल डिजर्व दैट हार्ड अर्नड रेस्ट है ना. फिलहाल तो यार थर्सडे को मैं एक्स्ट्रा सुपर डुपर एनर्जी लेकर आती हूँ शो पर और वही एनर्जी के साथ शो की शुरुआत करना चाहूंगी जबरदस्त गाने के साथ उड़ी उड़ी जाए सुखी बाजी की आवाज में. एंड दैट्स हाउ माय फीलिंग इज यार, आई जस्ट फील लाइक फ्लाइंग टू रेस्ट एंड फ्लाइंग टू एंजॉय. बने रहेगा मिर्ची माइक से दिल तक आफरीन के साथ. इट्स हॉट.

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: से बोल रहे हैं?
2: हाँ जी।
3: मुझे कुछ ऑर्डर करना था, आप लिख लेंगे प्लीज?
2: या
3: और रात के खाने के लिए लिख लीजिए प्लीज। ढाई किलो अरहर दाल, 3 किलो चना दाल, 3.5 किलो चना कबूली, 4 किलो चना डॉलर प्रीमियम, 1 बेसन। हाँ,
2: एक्चुअली में 2.5 किलो वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता, 2-2 किलो में, 1-1 किलो में पैकिंग होती है, तो 2 kg।
3: अब आपको ये मैं क्या, वो 2.5 किलो ही खाते हैं, मैं क्या करूँ?
2: Oh my God.
3: मेरे हस्बैंड हैं, डाइट उनकी है, आपको क्या प्रॉब्लम है?
2: नहीं मैम प्रॉब्लम।
3: 4 किलो चना दाल, 4 किलो चना कबूली,
2: चना दाल, चना कबूली, एरोप्लेन भेजूं?
3: एरोप्लेन भेजिए, हमें जाना ना हनीमून पे।
2: सॉरी मैम, मैं ये बोल रहा हूँ 5 kg एरोप्लेन राइट मैम, सॉरी।
3: एक सेकेंड, कभी फोन आ रहा है। स्वीट हार्ट आई लव यू, ऑर्डर दे रही हूँ। तुम आओ तो सही ना। No, I will be waiting for you, my sweetheart, my Janu.
2: Hello.
3: One second, मेरे हस्बैंड से बात चल रही है, 1 second. कब आओगे रात में? अच्छा सुनो, मेरे लिए रात में वो लेके आना ना, वही वही कुछ पूछे कुछ पूछे. Okay, sweetheart, bye. हाँ लिखिए, 3 प्लेट गोलगप्पे.
2: गोलगप्पे नहीं होते,
3: चकोर दे दीजिए. गोलगप्पे नहीं है, चकोर वाले दे दीजिए.
2: है नहीं मैम हमारे यहाँ,
3: लंबे वाले
2: नहीं है वो.
3: अच्छा लास्ट फाइनली, मैं और मेरे हस्बैंड जो बहुत शौक से खाते हैं.
2: क्या खाते मैम?
3: मुर्गा.
2: मैम वो भी नहीं है.
3: आपको ये नहीं मालूम दिल्ली में सबसे अच्छा मुर्गा कहाँ बनता है?
2: मैम ये हमें नहीं
3: पता. हमें मालूम है, मैं बताऊँ आपको?
2: हाँ जी मैम बताइए.
4: रेडियो मिर्ची. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं छोटा सा मजाक कर रहा था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया भाई साहब हमने.
2: आपकी आवाज में काफी कुकुड़कू.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

अच्छा, हमारे बचपन के समर वेकेशंस याद है आपको? वो दिन जब घर में कूलर चल रहा होता था, कजिन्स पूरे घर में धूम मचा रहे होते थे और किचन में एक बड़ा सा डब्बा रखा होता था जिसमें आम ठंडे पानी में डुबोए जाते थे। यार सच कहो ना तो हमारे जनरेशन के लिए समर का मतलब सिर्फ हॉलीडेज नहीं था, है ना? समर का मतलब था मैंगो सीजन, वो आम रस, वो मैंगो शेक, आम पन्नाए और मम्मी की वार्निंग, अरे एक साथ इतने आम मत खाना, है ना, बॉडी में गर्मी बढ़ जाएगी। और मुझे अच्छा लगता है कि कतर में ना हमारे बच्चे भी वही नॉस्टैल्जिया, वही मैंगो मैजिक एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बल्कि और भी बड़े स्केल पर, क्योंकि 18 से लेकर 27 जून तक सूक वाकिफ के ईस्टर्न स्क्वायर में लगने जा रही है इंडियन मैंगो एग्जीबिशन। यस, इट्स बैक एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। शाम 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आपको मिलेंगे इंडिया के डिफरेंट वैरायटीज के मैंगोज, मैंगो जूस, शेक्स, पेस्ट्रीज, केक्स और मैंगो इंस्पायर्ड ट्रीज। मतलब ऐसी ऐसी मैंगो की पकवान होते हैं ना वहां पर दैट यू एक्चुअली कैन नॉट इमेजिन। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है दैट इंडिया में ऑफिशियली 1000 से ज्यादा वैरायटीज के मैंगोज पाए जाते हैं। डिड यू नो दैट हर रीजन का अपना सुपरस्टार होता है? कहीं पर अल्फांसो और रत्नागिरी का है वो केसर, लंगड़ा, दशेरी, चौसा और बहुत कुछ। वैसे आप मुझे बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हो इंडिया में और वो कौन से मैंगो के प्रकार है या टाइप है जो आपके यहाँ पर फेमस है। 5000186 इज माई नंबर, लेट्स कनेक्ट हियर, व्हाट्सएप नंबर है मेरा। अपना मैसेज भेज के बताइए कि भाई आपको कौन सा मैंगो का टाइप पसंद है या फिर आपके यहाँ पर कौन सा मैंगो का टाइप मशहूर है। तब तक के लिए माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा और मिर्ची इट्स हॉट।

0: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
1: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: Well, तेवर मूवी का ये गाना जोगनिया श्रुति हसन ने गाया हुआ है. तेवर मूवी आप जानते हो? नहीं जानते हो, नेवर माइंड. क्योंकि ये मूवी में थे, कौन था ये मूवी में, वही तो प्रॉब्लम है कि ये मूवी में कौन है वही याद नहीं है. बिकॉज अर्जुन कपूर और सोनाक्षी सिन्हा थी. आई डोंट नो व्हेन दिस मूवी केम और गई. बट टॉकिंग अबाउट दिस सॉन्ग, आई लिटरली हैड टू गो एंड चेक ऑन गूगल के रियली श्रुति हसन, मतलब कमल हसन की वो बेटी और जो मूवीज में एक्ट भी करती है, वो सिंगर भी है. एक्चुअली मुझे भी ऐसी सरप्राइज हुआ था ये सुनकर. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और भाई जरा देख लेते हैं वेदर का क्या हालचाल है.
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान.
0: वेदर अपडेट.
1: वेल वेदर तो ये कह रहा है कि आज के दिन मैक्सिमम टेम्परेचर 45 तक जाएगा, मिनिमम देखा जाए तो 33 तक जाएगा. फिलहाल जो महसूस कर रहे हो आप वो 36 डिग्रीज पर है. लेकिन ह्यूमिडिटी अगर आप देखोगे कि इतनी गर्मी होने के बावजूद हमें ऐसे पसीने टपक नहीं रहे हैं, एंड दैट्स अ गुड थिंग राइट. हर चीज में अच्छाई देखने की कोशिश करें तो ये एक अच्छी चीज है. हवाएं हल्की हल्की सी चल रही है 13 किलोमीटर पर आवर पर. एंड स्टिल आई फील कि अगर वीकेंड आ गया है, वीकेंड पर रात के वक्त आपका बारबेक्यू का प्लान है, आउटडोर्स का प्लान है, स्टिल इट इज डूएबल. भाई सारे प्लान्स मेरे ख्याल से ऑन रखो, मस्त रहो और मेरे साथ बने रहो, यानी माइक से दिल तक आप फ्री के साथ ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय आरएसएल ग्रुप ऑफ कंपनी. अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब. फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: श्रेयस तलपड़े आपकी सबसे पहली हिंदी फिल्म इकबाल थी, लेकिन क्या आपको याद है सबसे पहला गाना आपने कौन सा शूट किया था?
2: एक्चुअली टेलीविजन सीरियल का हमने एक टाइटल सॉन्ग शूट किया था, तो आई थिंक दैट प्रोबब्ली वाज द वन व्हिच वाज माय फर्स्ट सॉन्ग एज सच। मराठी गाना था वो, टाइटल था सीरियल का बेधुंद मनाची लहरी। इट वाज लाइक बेधुंद मनाची लहर लहरी चा होती लाटा लाटा होता कहर किनारा शोधती हजार वाटा।
1: श्रेयस यू आर नॉट ओनली अ गुड एक्टर, यू आर अ फाइन सिंगर। मुझे लगता है आपको ये वाला ऑप्शन अब एक्सप्लोर करना शुरू कर लेना चाहिए। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: पावर्ड बाय IBA, बेस्ट रेट नो स्ट्रेस IBA वॉलेट का भरोसा डाउनलोड कीजिए आज ही IBA, द बेस्ट रेमिटेंस रेट इन कतर Pizza Partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion. All at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Good Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट चाइनीज मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज बजट में चाहिए टेस्टी डीज तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसिस में स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त
1: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल शॉपिंग डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन
2: Hygiene partner, hygiene. From clean skin to healthy life. Experience total protection with hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
1: Sugar-free partner, Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
3: Jewelry partner Sky Jewelry. हर पल को बनाए खास Sky Jewelry के साथ elegant designs, dazzling collections और हर budget के लिए perfect jewelry. Shop now and enter the mega draw on June 23rd for a chance to win a brand new Lexus car. Sky Jewelry, design for generations.
1: Refreshment partner Baladna Milk, Laban Yogurt. Experience the fresh, creamy taste that Qatar loves. Refreshing every moment with every sip and spoon.
0: Fragrance partner Faridi Perfumes Gallery. Make every moment unforgettable with premium Arabic and French fragrances crafted for every style. Visit our Al Saad branch, Faridi Perfumes Gallery. Luxury you can wear. Visual media partner Rehab Media.
4: 89.6
5: Mirchi.

0: Emergency helpline?
1: Hi there. What's up? Tell me.
0: Sir, computer में virus घुस गया है. क्या करूँ?
1: Oh my God. आज ही डॉक्टर के पास लेके जा और वैक्सीन दिला.
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा.

0: गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: देखो आप जरूर सोचोगे भाई आफरीन में क्या चीज है, ऑलरेडी वीकेंड की बातें कर रही है। देखो मुझे तो मजा आता है कि आगे की अच्छी वाली चीजों के बारे में बातें करने का। सो हियर इट इज, वीकेंड इज ऑन इट्स वे। एंड उसी चलते मैं हमेशा आपको बताती हूँ ना कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। घर में बैठे हो तो भाई OTT पे क्या करना है ये मैं जरूर आपको बताऊंगी।
2: अरे भाभी जी एकदम लेटेस्ट डिजाइन है,
3: फ्रेश है भैया, फ्रेश है, एकदम नया आया है।
4: अरे मार्केट में नया क्या है,
5: नया क्या है?
1: वेल देखो नया तो ऐसा है कि भाई अक्षय कुमार की जो पिक्चर आई थी भूत बंगला, हाँ थिएटर्स में आई थी, आपने देखा नहीं देखा कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, क्योंकि ये आ गई है OTT पर, यस नेटफ्लिक्स पर। दिस इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज ऑन 12th of June। प्रिया दर्शन और अक्षय कुमार का ये रीयूनियन तकरीबन 14 साल बाद हुआ था। एंड देन मूवी कैसी रही ये तो भाई थिएटर से जितनी जल्दी निकल गई है और OTT पर आ गई है इससे तो आपको पता चल ही गया होगा। लेकिन एक होता है ना अंदर से कि भाई नहीं देखना है भाई क्या क्या है ये, लेट्स हैव अ लुक। उसके अलावा देयर इज वन मोर, माँ है ना इज अ लाइट हार्टेड नॉन फिक्शन कॉमेडी कुकिंग शो। ये कुकिंग शो है विच इज होस्टेड बाय शिल्पा शेट्टी और ये Zee5 पर स्ट्रीम होने वाला है। दिस इज ऑल्सो हैपनिंग फ्रॉम 12th of June और यहाँ पर काफी सारे कॉमेडियंस आपको नजर आने वाले हैं, अली असगर, गौरव कपूर, चंदन प्रभाकर एंड ऑल दीज थिंग्स। सो ये सारे कुकिंग शो पर आकर अपना कॉमेडी का तड़का भी देंगे और साथ ही साथ कुछ खान पकवान भी पेश करने वाले हैं। सो दिस इज द वन, माँ है ना ऑन Zee5। अपार्ट फ्रॉम दैट करिश्मा कपूर इज बैक विद सम मैजिक। ब्राउन नाम का इनका एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज जो है ये Zee5 पर चल रहा है एंड दिस इज एब्सोल्युटली अ वेरी बोल्ड एंड डी ग्लैम अवतार ऑफ करिश्मा कपूर। और आई थिंक सो है जो क्राइम और ये सबसे बहुत एंटरटेन होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज है देखने के लिए। एंड देन माय फेवरेट यार गुल्लक Season 5 इज हियर। मतलब यार OTT सीरीज में शायद ही कोई है जो Season 5 तक पहुंचा एंड गुल्लक इज वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ देम।

वेल सोनी लिव पर ये है एंड दिस इज समथिंग यू शुड नेवर मिस, स्पेशली तब जब फैमिली के साथ देखने के लिए कोई कंटेंट आ गया है, तो व्हाई नॉट, राइट? माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. Na virtuala burka.
1: Milci, burka. Hello.
2: Is that Sanjeev?
1: Yeah, I'm speaking.
2: Hi Sanjeev, I am Atul calling from...
1: Okay.
2: संजीव आपने 3 राउंड्स क्लियर कर लिए हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए. ये आपका फाइनल राउंड है जिसमें हम कैंडिडेट के पेशेंस चेक करते हैं, उसमें कितने पेशेंस है, कितना इत्मीनान है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस तरह की जॉब है. तो आपको लगता है कि आप में पेशेंस हैं सारे?
1: पेशेंस तो है, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया हुआ उसमें भी मेंशन है ये चीज.
2: ओके.
1: कई तरह के कस्टमर्स होते हैं, उनको सेटिस्फाइड करने हमारा काम है.
2: कितने साल जॉब करी है आपने इससे पहले?
1: मैंने 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
3: 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
1: सॉरी सर,
2: कैरी ऑन रखिए. आप बताइए मुझे अपने बारे में. ये मैं आपके पेशेंस चेक कर रहा हूँ. हाँ बताइए. भड़कता हुआ कस्टमर आता है, कॉल करता है, तो उसको किस तरह हैंडल करते थे?
1: कस्टमर्स हैं, जब मैंने आपको बताया ना, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है. इस टाइप के कई कस्टमर्स आते थे जिनको हम बहुत ही कूलली, बहुत पेशेंट के साथ उनको सेटिस्फाइड.
3: बकवास बनकर कूलली तू करता था, कूलली दांत अंदर कर.
1: हम करते थे सेटिस्फाइड कर.
3: चुप कर, बकवास बनकर.
1: जैसे आप बोल रहे हो ना, ऐसी ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं वो लोग.
2: अच्छा, इससे ज्यादा दिखाते. अच्छा मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कोई कस्टमर ऐसा है जो कि मान ही नहीं रहा आपकी बात और वो डांटे जा रहा है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए?
1: सर, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले हमारी बात सुने.
3: अब टेस्ट तुम्हारा खत्म हो चुका, कोई पेशेंस चेक नहीं कर रहा. अब ये असलियत कह रहा हूँ, तुम्हें बोलने की तमीज है नहीं यार.
1: अभी तक
3: पेशेंस चेक कर रहे, लेकिन वाकई में तुझे तमीज ही नहीं है. मोबाइल के कस्टमर केयर में जॉब करने के लिए कह रहा है करूंगा. मोबाइल में पकड़ा कभी हाथ में?
1: बोल
3: जॉब करूंगा, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनूंगा. कस्टमर इंसान तो बन जा पहले यार, इंसान बना नहीं है.
1: खुद को देखा आपने कभी?
2: संजीव, कोई इंटरव्यू की कॉल नहीं है. मुझे पता चला तुमने 3 राउंड दे चुके हो. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बना रहा था. लेकिन तुम पूरी तरह क्वालिफाई कर गए हो ये राउंड. तुम्हें जॉब मैं दूंगा. Okay. तुम मेरे शो में आके बैठो. मुझ पे भी कभी कभी डांट पड़ती है.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

अच्छा मुझे बताइए, वो कौन सा यादगार लम्हा था आपके लिए? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और आज फीफा का नया सफर शुरू होने वाला है मेक्सिको सिटी से. और एट दिस मोमेंट मुझे बस हमारे कतर 2022 का फीफा याद आता है. एंड मुझे क्या, आई एम श्योर सभी को. अब जब हमारा वाला फीफा याद करने की कोशिश करूँ ना, तो वो कौन सा लम्हा है जो आपके लिए खास है? देयर आर सो मेनी ब्यूटिफुल मोमेंट्स. मतलब ओपनिंग सेरेमनी जिसने पूरे दुनिया को एक लाया था विद सच अ ब्यूटीफुल मैसेज, या फिर वो आइकॉनिक मेट्रो गाय को हम याद करें मेट्रो दिस वे, या फिर हम वो फैंस को याद करें जिन्होंने सूक वाकिफ में इतना खूबसूरत सेलिब्रेशन किया था. भले ही वो अर्जेंटीना के फैंस हो, सूक सऊदी अरेबिया के फैंस हो, या फिर कतर के ही फैंस क्यों ना हो, हर मैच के जीत के बाद वो सूक वाकिफ का जश्न याद आता है. या फिर वो मोमेंट याद करें जब सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना को हराया था और उसके बाद उनके एक फैन ने वेर इज मेसी जो वायरल मोमेंट हुआ था. या फिर वो टीम को याद करें जो डार्क हॉर्स निकली और सेमीफाइनल्स तक पहुंची थी. मैं बात कर रही हूँ मोरक्को की. और फिर वो मोरक्कन प्लेयर का जश्न मनाना अपने माओ के साथ में और डांस करना ऑन द ग्राउंड, व्हाट अ क्यूट एंड ब्यूटीफुल एंड इमोशनल मोमेंट दैट वाज. या फिर द आइकॉनिक मोमेंट ऑफ कतर 2022 वर्ल्ड कप, दैट वाज मेसी लिफ्टिंग द कप. या फिर वो याद करें जब उसके बाद लुसेल में इतना जबरदस्त परेड हुआ और इतना जबरदस्त जश्न हुआ, एक ही झटके में आपको वो पूरा महीना याद आ गया. नहीं, लेकिन आई एम श्योर इसके अलावा भी कई सारे मोमेंट्स होंगे जो आपके लिए खास होंगे. तो मुझे बताइए ना 5000 1896 पर, दैट वो कौन सा लम्हा था जो आपके लिए बिल्कुल यादगार था ऑफ कतर 2022 वर्ल्ड कप. मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद, इरशाद

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: काउंटडाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सब।

0: फिलहाल तो ख्याल मेरा ये है कि भाई मेरा मन जो है भटक रहा है मेरे बचपन की तरफ, एंड दैट्स व्हाट इज मेकिंग मी प्ले द नेक्स्ट ट्रैक. फिलहाल उससे पहले वक्त बता दो, मिर्ची घड़ी में बज रहे 7:41 एंड द नेक्स्ट ट्रैक रिमाइंड्स मी ऑफ माय बचपन, बिकॉज यार मैंने ना मेरे सोसाइटी के फंक्शन में ये गाने पर डांस किया था और मुझे प्राइज भी मिला था. यार आप भी सुनो ये गाना, एंड आई एम श्योर कुछ ना कुछ मेमोरी आपके भी ध्यान में आएगी.
1: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: Yes, one and only Ashutai ki awaaz mein ye iconic gana Taal movie se. And I just can't forget the mesmerizing Aishwarya Rai in this song, yeah. माइक से दिल तक आप फ्रेंड के साथ एंजॉय कीजिए और कुछ ही देर में लेकर आ रही हूँ सवाल आपके लिए. सो यू गॉट स्टे ट्यून्ड विद मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: व्हाट अ ब्यूटीफुल गाना है यार, मतलब मुझे बस मजा ही आ गया। इनफैक्ट ताल मूवी के हर एक गाना वाज सो मेमोरेबल, सो आइकॉनिक, सो नॉस्टैल्जिक। राइट नाउ आई फील बस दिल खुश हो गया भाई आज। फिलहाल के लिए तो आपका दिन अच्छा बनाने के लिए और आपका दिल खुश करने के लिए यहाँ पर मैं आ गई हूँ, सिंपली आफरीन, राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड नाउ इज द टाइम, माय बंधुओं, सब फोन रेडी करो और आपका जो जवाब है वो रेडी रखो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर डायलॉग सुनाने वाली हूँ। एंड टुडे आई फील इट इज ए ईजी पीजी डायलॉग, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, 5000 1896 इज माई व्हाट्सएप नंबर। दिस इज द प्लेस वेर यू हैव टू सेंड मी द टेक्स्ट एंड द डायलॉग गोज लाइक दिस।
0: Lights, camera, scene test. Scene test.
2: अच्छा अच्छा, कल full day सिर्फ तू और मैं, rats and meow. अड्डे चलेंगे, फिर picture देखने जाएंगे और फिर dinner.
3: हम दोनों साथ रहते थे क्योंकि हमें साथ रहना अच्छा लगता था। ये कोई duty या जिम्मेदारी नहीं है।
1: Just the same thing applies to us, right? कि हम यहाँ पर एक दूसरे को सुनते हैं, आप मुझे सुनते हैं, क्योंकि साथ रहना और सुनना यहाँ पर अच्छा लगता है। कोई ड्यूटी या जिम्मेदारी थोड़ी है। फिलहाल के लिए तो ये कौन सी मूवी का डायलॉग है ये बताओ। मुझे तो लगा ये इजी है। 5000 1896, आपका क्या ख्याल है? मैसेजेस आना हो गए हैं स्टार्ट एंड आई लाइक इट। मोहम्मद खान का मैसेज आ गया है, क्या आया है वो थोड़ी ना बताऊंगी वो थोड़ी देर बाद बताऊंगी। कुंवर का भी यहाँ पर मैसेज आया है एंड यस, Let the messages flow in. तब तक के लिए KK की आवाज में back to back जबरदस्त गाने and I am sure you are gonna love your ride today because गाने भी तो वैसे लेकर आई हूँ। गैंगस्टर का ये गाना और कंगना की मेरे ख्याल से ये पहली मूवी थी and I was quite impressed by the way she looked, that curly hair. बहुत कम ऐसे होता है ना बॉलीवुड में curly hair heroine. Enjoy this track on Mirchi, it's hot.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: बादशाह, आपने इतने गाने बनाए, इतने गाने कंपोज किए हैं, सबसे पहला रैप आपने किस पे लिखा था?
3: जो मैथ्स के टीचर है उन पे रैप लिखा था। टीचर अच्छे नहीं थे, क्योंकि एक जैसे टीचर होते हैं वैसे वो थे नहीं, तो मैंने उन पे रैप लिखा जो काफी मशहूर हो गया। दैट वाज माय फर्स्ट। दिक्कत तब हुई जब वो रैप उन्होंने ही पढ़ लिया, उसके बाद मेरा एजुकेशन पे से विश्वास ही उठ गया।
2: 2+2=4, बादशाह गिव अस मोर, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: और हम सभी फिदा हैं केके की आवाज पे, राइट? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और एक मजेदार सवाल पूछा था मैंने आपसे, ये पूछा था कि वही तो मैं सुनाऊंगी, ऐसा थोड़ी बोल सकती हूँ. लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट चल रहा है ना. तो रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से सुनो. चलो,
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. सीन टेस्ट.
2: अच्छा चल, कल फुल डे सिर्फ तू और मैं, रैट्स एंड मियाओ. अड्डे चलेंगे, फिर पिक्चर देखने जाएंगे. और
3: हम दोनों साथ रहते थे क्योंकि हमें साथ रहना अच्छा लगता था. ये कोई ड्यूटी या जिम्मेदारी नहीं है.
0: That is so true. I can relate to this. हम यहाँ पर रोज सात वक्त गुजारते हैं सुबह में क्योंकि आपको सुनना अच्छा लगता है. कोई ड्यूटी या जिम्मेदारी थोड़ी ना है. सो वेल, कौन सी मूवी है? यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आए भाई. त्रिशा का मैसेज आया है, चीनू का मैसेज आया है, ताहिर का मैसेज आया है, मोहम्मद गुलाम कुंवर, एंड देन हु इज दिस, मोहम्मद खान. एंड यस, एवरी वन हैज टू से द सेम थिंग. आफरीन, ये जो मूवी तुमने सुनाई है ना, ये जाने तू या जाने ना से है. सो वेल, जाने तू या जाने ना के ना इतने जबरदस्त गाने हैं बाय द वे, एंड आई एम कंफ्यूज्ड विद सॉन्ग टू प्ले फॉर यू. सो हियर इट इज. द ऑप्शन गोज लाइक, गाना नंबर वन, क्या आपको ये सुनना है?
4: कभी कभी जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है.
0: या फिर गाना नंबर टू, या गाना नंबर तीन, I like the song. Yeah, gana number 4. Yes, giving the right kind of energy this weekend. बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करोगे आप? And यार आपकी और मेरी चॉइस काफी सेम नहीं लगती है. यहाँ पर मैसेज आया है कि भाई यार रहमान की आवाज में ये गाना सुना दे तो your riches. कुछ तो अलग बात है ना ये गाने में. Because has to be A.R. Rahman. Enjoy this track. Mike Sadil Tak Afreen ke saath on Mirchi It's Hot.

0: हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: मेरे बॉस की सारी गलती की ओनरशिप हर बार मुझे ही लेनी पड़ती है, क्या करूं?
1: अरे तो बॉस को बोल दो कि ये कंपनी भी उनकी एक गलती है।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे अलकट हंस।

तो कतर में एक चीज मुझे बहुत पसंद आती है कि यहाँ टेक्नोलॉजी सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होती है, एक्चुअली लाइफ इजी बनाने के लिए होती है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और देखिए, मान लीजिए आपने पासपोर्ट को रिन्यू किया है, अब आपको अपने QID में आपके नए पासपोर्ट की डिटेल्स डालनी है। मुझे पता है आपने ये पहले किया है, लेकिन कभी कभार कुछ चीज़ें सही टाइम पर किसी को सुनने मिल जाए तो किसी का फायदा हो जाए। पहले क्या होता था ना, फॉर्म्स और फिर सर्विस सेंटर के चक्कर, ये सारा कुछ होता था। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बहुत आसान कर दिया है। अगर आपका पासपोर्ट रिन्यू हुआ है तो अब आप डायरेक्टली ट्रैश ऐप के थ्रू पासपोर्ट डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। बस रेसिडेंसी सेक्शन में जाएं, चेंज डेटा, चेंज पासपोर्ट सिलेक्ट कीजिए, QID नंबर दीजिए, पासपोर्ट की फर्स्ट पेज एंड फोटो अपलोड कीजिए, पेमेंट कीजिए, एंड दैट्स इट। मतलब इट्स लिटरली एट योर फिंगर टिप्स। मतलब कितना टाइम सेविंग भी है ना ये। और यहाँ आती है वो बात जो मुझे सबसे इंप्रेसिव लगती है, कतर सिर्फ डिजिटाइज नहीं कर रहा है, ऑप्टिमाइज भी कर रहा है ना। और टाइम इज द न्यू करेंसी, मुझे यही लगता है। मतलब जितना आप टाइम अपना बचाते हो, आपके लिए ही फायदेमंद है। तो एनी वन हु इज लिसनिंग, हु माइट जस्ट नीड टू हियर दिस एंड इट्स यूजफुल फॉर यू, हूँ आफरीन आपके साथ माइक दिल तक। ऐसे ही खबरें लेकर आती हूँ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Gambana. Burka, burka. La virtua la burka.
1: Mirchi, burka.
2: हेलो
1: हेलो नवनीत
2: या
1: नवनीत, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ।
2: हाय नवेद,
1: क्या हाल चाल है?
2: बढ़िया है।
1: आपने मैसेज किया था अपने फादर का मुर्गा बनवाने के लिए।
2: हाँ हाँ हाँ, बन गया क्या?
1: यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने किस आदमी का नंबर दिया यार मुझे?
2: हाँ?
1: सोच समझ के नंबर देते हो नहीं देते हो? मैंने उनको फोन किया, वो मुझ पे भड़क रहे हैं यार शुरू में ही।
2: यार मैं तो अपने पापा का ही नंबर दिया।
1: पापा का नंबर, नाम क्या है यार पापा का?
2: मिस्टर दिलीप कुमार।
1: उनसे ही मेरी बात हुई है यार। मैंने माना, मजाक अपनी जगह है, मुर्गा बनाता हूँ, मैं भी हंसता हूँ, तुम्हें भी हंसाता हूँ, लेकिन यार ये थोड़ी उसका नाजायज फायदा उठा लो तुम।
2: मैं क्या कुछ गलत
1: बोल दिया यार? मैं मतलब यहाँ पे इसलिए आता हूँ कि मैं गालियाँ सुनूँ यार?
2: अब ऐसी बात क्या
1: ऐसी ऐसी बात क्या हो गई? अपने फादर से पूछो यार जाके। नहीं, अपने फादर से क्यों नहीं पूछते तुम जाके?
2: अब मैं क्या
1: पूछूं यार, तुम्हें पहले कहना चाहिए था मुझसे कि उन्हें गुस्सा आता है, वो ज्यादा भड़क जाते हैं यार।
2: अब गुस्सा तो सभी को आता है, ठीक से बात कर ले।
1: तुम मुझे बताओगे कि मैं कैसे बात कर लेता यार? नवनीत कमॉन यार, ऐसे नहीं होता है। मैंने माना कि चलो एक शो है, मुर्गा बनाते हैं उसमें, ये थोड़ी यार क्या तुम उठा के किसी का भी नंबर दे दो, किसी का भी मुर्गा बनवा लो।
2: अब कुछ ज्यादा पापा ने बोल दिया तो
1: अरे तो
2: तरफ से मैं माफी
1: मांगने से क्या होता है यार? ऐसी मैं माफिया मांग रहा था उनसे, मैंने माफी मांगी है 50, वो नहीं मान रहे। तुमने यार पता नहीं उठा के क्या समझ रखा है मुझे।
2: अब मैंने क्या, आपने बोला कि मुर्गा बनाना है, SMS कर दो, मैंने कर दिया।
1: तुम मुझे क्या पता था यार तुम अपने ऐसे फादर का नंबर दे दोगे यार?
2: ऐसे फादर क्या, मेरे तो एक ही फादर है, मैं ढूंढ के लाऊंगा।
1: अरे तो यार अब तुम उल्टे मुझसे बात कर रहे हो। एक तो पहले बाप की सुनिए, अब मैं बेटे की सुन लो। यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या?
2: मेरा खराब नहीं हो गया, मुझे लग रहा है आप ही का थोड़ा हो गया।
1: इस वक्त तुम्हारा ही मुर्गा बन रहा है, मेरी तुम्हारी फादर से अभी तक बात भी नहीं हुई। ऐसे अच्छे काम होते रहते हैं यहाँ पर। वैसे तुम्हारे फादर के वाकई में गुस्से वाले हैं?
2: नहीं, ऐसा तो नहीं है, कभी कभी तो गुस्सा कर ही देते।
1: चलो एक बार प्यार से मेरे साथ उनकी तरफ से बोल दो
2: कुकड़ुकु।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

श्रुति रानी की आवाज में ये गाना कोई सहनी बाबू, और जब भी ये गाने का रीमिक्स वर्जन बनता है ना हमेशा अच्छा ही लगता है। वेल, ओरिजिनल गाना जो है ना 1969 में लोफर मूवी में आशा ताई ने गाया था। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और चलिए जरा नजर डालते हैं आज के हमारे एक्सचेंज रेट पर। वेल, क्या कहता है आज का आईपे का एक्सचेंज रेट, ये देखते हैं। एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.14, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीज 76.73। बांग्लादेशी टाका की बात करें तो 33.75 पर है। श्रीलंकन रुपीज 90.87 एंड नेपाली रुपीज 41.89। ये थे आज के एक्सचेंज रेट। घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां, खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला वन एंड ओनली 89.6 मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आईबी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईबी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल, सीधा, नो टेंशन. चेक द आईबी ऐप टुडे फॉर आवर 5, 10, 15, 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईबी, स्मॉलर फीस, बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: अरिजीत सिंह और निहारिका की आवाज में वन ऑफ माय फेवरेट अंडररेटेड ट्रैक्स ऑफ अरिजीत सिंह फ्रॉम द मूवी किल बिल। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को और वक्त हो चला है कि हम यहाँ पर गेम खेले, लेकिन एक्चुअल क्या वक्त हुआ है वो तो देख ले। मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 8:41।
0: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: यस, आज की कहानी क्या है जरा सुन लेते हैं। फोन रेडी रखो और नंबर है 5000-1896। मूवी की कहानी सुना रही और आपने बताने कि भाई आखिर ये आफरीन कौन सी मूवी की बात कर रही है। सो हियर इट गोज। एक NRI लड़का अमेरिका से पुरानी दिल्ली आता है अपनी दादी के साथ। प्लान सिंपल होता है, दादी की देखभाल करो और थोड़े दिन बाद वापस चले जाओ। पर फिर वो दिल्ली की गलियों में फंस जाता है और यहाँ फंसना बुरी बात नहीं है। हर गली में एक कैरेक्टर, हर गली में एक कहानी होती है, हर गली में एक ओपिनियन होता है। पूरा एरिया एक मिस्टीरियस काला बंदर के डर में जी रहा होता है। कोई उसे देखता नहीं पर सब उसकी बातें करते हैं। धीरे धीरे लगता है कि बंदर कम सोसाइटी के फियर्स और प्रेजुडाइसेस ज्यादा डेंजरस है। बताइए आफरीन कौन सी मूवी की बात कर रही है। 5000-1896 इज माय व्हाट्सएप नंबर, लेट्स कनेक्ट हियर। मैसेजेस भेजिए, अपना नाम जरूर लिखिएगा। और मैसेजेस आने हो गए हैं शुरू। यहाँ पर जाहिद का मैसेज आया है। जाहिद यू आर एब्सोल्युटली राइट। या चलिए मैं यहाँ पर रिप्लाई करती हूँ, तब तक के लिए आप अगला गाना एंजॉय कीजिएगा। नवराज हंस हर्षदीप कौर की आवाज में ब्रिंगिंग द राइट काइंड ऑफ वीकेंड वाइब विद द सॉन्ग माइक से दिल तक आफरीन के साथ अनमिर्ची। इट्स हॉट।
2: ओ कुड़ियो गुड़ की न

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: जब भी ताल फिल्म देखती हूँ ऐश्वर्या राय बच्चन के पीछे एक क्यूट लड़का दिखता है और वो कौन है? शाहिद कपूर। बट शाहिद, इफ आई हैड टू आस्क यू अबाउट योर फिल्म जर्नी एंड योर फर्स्ट सॉन्ग, कौन सा था वो?
3: मेरा पहला गाना था, इट वॉज इन इश्क इश्क ऑब्वियसली। द फर्स्ट सॉन्ग वॉज दिस सॉन्ग वी डिड इन अ कैंटीन कॉल्ड लव लव लव करो, वेयर ऑल द गाइज आर ट्राइंग टू इम्प्रेस द वुमेन।
2: शाहिद, व्हाट अ लवली डाइव इन नॉस्टैल्जिया। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: हॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: अल जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार की आवाज में ये गाना राइटर ऑन मिर्ची। वेरी गुड मॉर्निंग कतर। अरे भाई वीकेंड है, आज की एनर्जी होनी चाहिए सुपर डुपर हाई, राइट? बस इसी एनर्जी के साथ में यहाँ पर मैंने आपसे सवाल पूछा था, गेम शेम खेल रहे हैं, एकदम चिल माहौल बना रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि वीकेंड आने वाला है, तो इजी सवाल भी पूछा था। मतलब यहाँ पर एक बॉलीवुड मूवी की कहानी सुनाई थी मैंने, एंड आपने गेस करना था आखिरकार ये मूवी है कौन सी, ठीक है? सो द कहानी गोज लाइक दिस, विच सेज, ये कहानी है दिल्ली की, ठीक है? एक NRI लड़का अमेरिका से पुरानी दिल्ली आता है अपने दादी के साथ। प्लान बड़ा सिंपल होता है, दादी की देखभाल करो, थोड़े दिन रहो और फिर वापस चले जाओ। पर फिर वो दिल्ली की गलियों में ऐसा फंस जाता है, और यहाँ फंसना बुरी बात नहीं है, हर गली में एक कैरेक्टर है, हर छत पर एक कहानी है, हर दुकान में एक ओपिनियन है, बड़े मजे की गली आएंगे। बट यहाँ पर एक पूरे एरिया में मिस्टीरियस काला बंदर का डर फैल जाता है, कोई उसे देखता नहीं है पर सब उसकी बातें करते हैं। बताइए भाई ये कौन सी मूवी बात कर रही है आफरीन? बहुत सारे मैसेजेस आए हैं यहाँ पर, मोहम्मद यूसुफ खान, देन आई हैव हियर, कौन भाई, कौन है भाई तुम्हारा नाम? अभिषेक बच्चन है? नहीं ना, अपना नाम लिख लिया करो ना। विवेक का मैसेज आया है, एंड देन आई हैव जाहिद मैसेजिंग हियर, एंड एवरीवन सेज दैट आफरीन जो मूवी की बात कर रही है उसका नाम है दिल्ली 6। यस, अभिषेक बच्चन की ये मूवी, रोशन मेहरा का किरदार जो इन्होंने निभाया था, ये पहले ऋतिक रोशन को दिया गया था, फिर इसे सिद्धार्थ यानी रंगदे बसंती वाली सिद्धार्थ जिन्होंने भगत सिंह का किरदार किया था, यस, उसे भी दिया गया था। इमरान खान, रणबीर कपूर, अक्षय कुमार के पास सब जगह घूम फिरने के बाद ये रोल अभिषेक बच्चन के पास आया था। एंड वन थिंग आई लाइक्ड अबाउट दिस मूवी वाज सोनम कपूर। सोनम कपूर के आउटफिट्स एंड द वे शी लुक्ड एंड द एंटायर कैरेक्टर उनका बड़ा प्यारा सा लग रहा था। सो दोस्तों हो जाए दोहा वालों, ये गाना आपके लिए जो भी दिल्ली से बिलोंग करता है, आपके लिए खास डेडिकेटेड। माइक से दिल तक आफरीन के साथ ऑन मिर्ची के साथ।

0: слишком опять.
1: Алло, Мерси Хелплайн?
2: Мерси Хелплайн, what is the question?
1: Аре, яр, мэй то аз мэра ID кард и бул гая. कॉलेज में कैसे जाऊं?
2: अरे गोचू, आईडी कार्ड ही बोला है ना, अंदर जाने का रास्ता तो पता ही होगा ना, तो चला जाना।
3: साले का खोपड़ी तोड़, साले का।

0: पीछे।
1: मैं लता दत्तिया की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, मैं हूँ आफरीन आपके साथ। और आज न जाने क्यों सुबह से ना बड़ा नॉस्टैल्जिक फील कर रही हूँ मैं, और इतनी भी पुरानी यादें नहीं याद कर रही हूँ मैं, बस कुछ साल पहले की, यानी अब से 4 साल पहले की, 2022 साल, जो मेरे ख्याल से कतर में रहने वाले जितने भी लोग हैं ना, हमारे लिए मोस्ट गोल्डन ईयर ऑफ आर एंटायर लाइफ इन कतर हैज़ टू बी द ईयर 2022 एंड स्पेसिफिकली द मंथ दिसंबर, एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वेल, मैं कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात कर रही हूँ, जो इतनी शानदार तरीके से तो हुआ ही था। इनफैक्ट एक अलग ही किस्म का एक बेंचमार्क सेट किया था कतर ने कि भाई अगर करना है कभी फुटबॉल वर्ल्ड कप तो इस तरह से करो भाई, ये तरीका होता है। वेल, आज मैं इतना क्यों याद कर रही हूँ, क्योंकि भाई फीफा वर्ल्ड कप 2026 ये जो है ये आज से शुरू होने वाला है, और जो ओपनिंग सेरेमनी है, मज़े की बात ये है, देखो अब बताती हूँ मैं, ऐसा होता नहीं है अमूमन, बट दिस टाइम द ओपनिंग सेरेमनी 3 जगह पर हो रही है, बिकॉज वर्ल्ड कप इस बार 3 जगह पर डिवाइडेड है। जैसे आज जो है 11th of June, आज मेक्सिको सिटी में जो है वहां पर ओपनिंग सेरेमनी होगी, क्योंकि आज साउथ अफ्रीका और मेक्सिको का मैच है। उसके अलावा कल फिर से एक वो ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है जो कनाडा में होगी, टोरंटो में होने वाली है, क्योंकि कनाडा का फर्स्ट मैच है। एंड देन 12th June को भी लॉस एंजलिस में USA का फर्स्ट मैच है। एंड ऑफकोर्स कतरीज जो होते हैं ना, वो फुटबॉल के बहुत बड़े फैन होते हैं, सो काफ़ी लोग US, मेक्सिको, कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं। और ऑब्वियसली कतर इतना जब फुटबॉल को सपोर्ट करता है, इट्स नॉट ओनली फॉर वर्ल्ड कप, यहाँ पे एशिया कप होता है, यहाँ पे गल्फ कप होता है, कितने सारे किस्म के मैचेस होते ही रहते हैं, तो जो लोग जा भी रहे हैं ना उनके लिए बहुत अच्छे गुड़ी बैग्स और ये सब फ्लाइट में मिल रहे हैं, मतलब कतर है शानदार तरीके से सब अरेंजमेंट करेगा, है ना। वेल, मैं हूँ आफरीन आपके साथ, और बस ऐसे ही मैं आज बहुत याद कर रही हूँ कतर के 2022 के मोमेंट्स। अगर आपके भी ऐसे कोई मोमेंट है जो आपको याद आ रहा है कि यार आफरीन हमने ये किया था, या फिर एटलीस्ट टेल मी कि वो कौन सी मैच है जो आपने स्टेडियम में देखी है, 5000 1896 इज माई नंबर, यहाँ पर बताइए कि आपने फुटबॉल वर्ल्ड कप के कौन सी मैच स्टेडियम में देखी है। आई एम वेटिंग टू हियर दैट। इनफैक्ट मैंने ना, पता है मैंने कौन से, वो रोनाल्डो, हाँ रोनाल्डो की मैच मैंने देखी है स्टेडियम में, और मैंने कतर की मैच भी स्टेडियम में देखी है, बड़ा मजा आया था। विशाल मिश्रा की आवाज में ये अगला गाना माइक से दिल तक आफरीन के साथ मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La vieta la burka. Mirchi, burka.
1: Hello?
2: Hello, Sunil ji.
1: Haan ji.
2: Sunil ji, पेट्रोल पंप से बोल रहा हूँ सर. कंग्रेचुलेशंस, आप लकी विनर हैं.
1: किस चीज के जी सर?
2: सर आपका 20 लीटर पेट्रोल निकला है बिल्कुल फ्री. मैं तो सोच रहा था बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि पेट्रोल के.
1: वेरी गुड यार, भी तो बहुत बढ़िया.
2: तो सर ये आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको फिल कराना होगा, भरवाना होगा अपनी गाड़ी में.
1: ठीक है. अच्छा एक बात तो बताइए सर जी.
2: हाँ जी.
1: इसके क्या पैसे ऐसे देने पड़ेंगे कुछ?
2: नहीं सर, पैसे कोई नहीं, कोई पैसा नहीं.
1: कंडीशन वगैरह
2: नहीं सर, कोई सर कोई कंडीशन नहीं है. पुराने ग्राहक है आप, ऐसे कैसे कंडीशन रख लेंगे?
1: वो तो ठीक है, ग्राहक पुराने ग्राहक को आदमी थोड़ा अपना समझ के कहते ना, अपने कोई ज्यादा.
2: बस सर बिल्कुल फ्री है, पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे. एक छोटा सा काम करना पड़ेगा.
1: क्या?
2: पुराना लाइए, नया ले जाइए.
1: क्या भैया, पुराना क्या लाऊं भाई?
2: पुराना पेट्रोल लाओ, नया ले जाओ सर, बस यही है. और वो भी आप ही का निकला.
1: क्या बात हुई, पुराना कहाँ से लाऊं?
2: सर पुराना जो आपने
1: पुराना हो तो जल के वो खत्म कर दिया हो तो
2: सर जो आपने पुराना यूज किया होगा वो तो लाना पड़ेगा ना आपको.
1: धुआं में कहाँ से इकट्ठा करूँ?
2: पहले तो आप बड़े दांत फाड़ रहे थे जब मैंने आपसे कहा 20 लीटर फ्री पेट्रोल है. वाह वाह जी, वाह वाह, थैंक यू. अब मैं आपसे कह रहा हूँ
1: पेट्रोल मिल गया तो मुझे बड़ी अच्छी बात है.
2: अरे
1: क्या हो रहा?
2: अरे तो ये क्या
1: पुराना कहाँ से लाऊं?
2: पुराना आपको लाना पड़ेगा. ये भी मैं पुराना भी मैं. वैसे हर वक्त रोते रहते हैं पेट्रोल के पैसे बढ़ गए. हम फ्री दे रहे हैं तो ला के नहीं दे सकते पुराना. यार कमाल कर रहे हैं आप.
1: पेट्रोल फालतू का.
2: अच्छा.
1: पुराना लाओ, नया ले जाओ, ये ले जाओ.
3: अरे मेरी बात सर जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. अगर आप पुराना ले भी आए तो भी आपको 20 लीटर पेट्रोल फ्री नहीं मिलेगा. हाँ मुर्गा खाने को जरूर मिल सकता.
2: सर मजा आ गया आपसे बात करके. मतलब आपके गुस्से से डर गया मैं.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची.

देखो साल 2022 ने एक चीज का शौक जरूर चढ़ा दिया था हम पर, एंड आपको पता है मैं किस चीज की तरफ इशारा कर रही हूँ, बट ऑब्वियस फुटबॉल की तरफ। ये म्यूजिक सुनकर तो भाई पूरी तरह से मैं नॉस्टैल्जिक हो जाती हूँ, और वो पूरा वाइब याद आता है कतर का कि जिस तरह से वो दो महीना कोई अगर फुटबॉल नहीं भी देखने वाला होता है ना, कि उन्हें भी वो शौक चढ़ गया था, और वो शौक थोड़े टाइम के लिए नहीं था, इनफैक्ट उसके बाद भी हमने काफ़ी सारे मैचेस में इंटरेस्ट लिया। नाउ दैट फीफा वर्ल्ड कप 2026 इज स्टार्टिंग, तो बस ये बता दूं भाई आप कतर में कहाँ देख सकते हो। वैसे बता दूं अलमहा आइलैंड पर विजिट कतर का एक फैन जोन है बाकायदा, आप वहां पर जाकर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हो मैचेस की। उसके अलावा मॉल ऑफ कतर में भी ओएसिस स्क्रीन पर मैचेस चलने वाली है, एंड इतना ही नहीं भाई पूरे कतर में कोई भी आप कैफेज लाउंजेस वगैरह पे जाएंगे तो वहां पर भी है। इनफैक्ट ऑर्नाडो ड्यून प्लाजा वेस्ट बे यहां पर भी स्क्रीनिंग होने वाली है। सो ऑल इन ऑल कतर में छोटा ही सही फिर से ये माहौल हमारे फुटबॉल का वापस आएगा। एंड आई ऑल्सो लाइक वन प्लेस टू वॉच मैचेस एंड दैट इज वेस्ट वॉक। वेस्ट वॉक में कैफेज में बैठिए, वहां पर भी बड़ी बड़ी स्क्रीन पर ना मजेदार तरीके से स्क्रीनिंग होती है मैचेस की, एंड यू शुड रियली गेट दैट वाइब बैक एंड एंजॉय इट। मैं हूं आफरीन आपके साथ, माइक से दिल तक ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: सी आवाज में ये गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची. मैं हूँ आफरीन आपके साथ और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 9:33 पर. शो का आखिरी आधा घंटा बचा है, फिर तो मेरी छुट्टी होने वाली है शुरू. मजा ही आने वाला है. आप बने रहेगा मेरे साथ, यानी सिंपली आफरीन के साथ ऑन मिर्ची.
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
4: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
6: बार बार।
4: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: What a beautiful gana, duniya. मतलब होता है ना अक्सर कुछ लोग किसी की पूरी दुनिया होते हैं. और जानते हो दोस्त, मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? जब वो सिर्फ किसी के एक शख्स तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि आपकी आदत, आपकी मुस्कुराहट और आपकी दुआओं का हिस्सा बन जाती है.
0: आफरीन की डायरी से शायरी.
1: तो अर्ज किया है, मोहब्बत वो नहीं जो हर रोज इजहार मांगे, मोहब्बत वो नहीं जो हर रोज इजहार मांगे, मोहब्बत वो है जो खामोशी में भी प्यार मांगे. ना पास रहने की जिद, ना मिलने की शर्त रखे, बस तेरा जिक्र आए तो दिल मुस्कुराने लगे. और बस इसी खूबसूरत एहसास के साथ 90s इनी पॉप का एक ऐसा गाना जो मुझे बहुत पसंद है और मेरे दिल के बहुत करीब है,
2: पहला ये पहला प्यार तेरा मेरा,
1: कुमार सानू की आवाज,
2: मुलाकात है
1: राइट 89.6 मिर्ची 1. It's hot.

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: विद्या बालन आपने 40 से ज्यादा फिल्में कर ली, 2014 में पद्मश्री कमा लिया, इतने सारे इयर्स ऑफ अचीवमेंट के बाद डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट सॉन्ग यू फिल्म्ड फॉर?
2: ऑफ कोर्स कस्तो मजा परिणीता से, और शिलीगुड़ी में शूट हुई थी इस गाने की और बहुत मजा आया था। इतने लोग थे और पीरियड फिल्म है, लोग स्कूटरों पे और मोटर बाइक्स पे गाड़ियों में आ रहे थे एंड वी कुडंट हैव दैट इन द शॉट। सो हम लोग ट्रेन पे थे और हम लोग ट्रेन एक तरफ लेके जाते, फिर पता चलता कि जब मॉनिटर देखते तो पता चलता कि ये गाड़ियाँ आ गई है, लोग आ गए हैं गाने में, तो फिर से हम लोग रिवर्स में आ जाते, फिर शूट होता। एंड इट्स माय फर्स्ट सॉन्ग, इट्स आल्सो माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम परिणीता।
1: ओह दैट्स अ टफ वन विद्या बालन, परिणीता का हर गाना इतना गोल्डन है, इट्स टफ टू चूज अ फेवरेट। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

सोनी सी आवाज में सोना सोना सा गाना अरिजीत सिंह की आवाज में राइट ऑन मिर्ची और जुड़ गई आपके साथ ये सोनी कुड़ी। वेरी गुड मॉर्निंग दोहा भाई, मैंने तो मेरा काम कर दिया है आप सभी को जगाने का, मतलब पिछले 4 घंटे से कर रही हो भाई, 6 बजे से लगी हो ये गुड मॉर्निंग जाग गए हो, काम पर भी पहुंचा दिया है आधे लोगों को। अब मेरा काम हो गया यहाँ पर खत्म और मैं चली भाई मेरा वीकेंड एंजॉय करने के लिए। और सच कहूँ ना कि मैं पिछले वीकेंड पर ही मैं आई थी, ठीक है, मैं हज पर गई थी तो उसके बाद इतनी थकान थी और उसके बाद तुरंत आई जॉइंट वर्क, तो वो जो आराम करने का सिलसिला था, फेज था, वो कहीं ना कहीं मुझे मिला नहीं। एंड दिस इज द वीकेंड आई वॉज रियली वेटिंग फॉर कि भाई ये वीकेंड मैं क्या करूँगी, तो मैं तो सो जाऊंगी, बहुत दिनों की पेंडिंग नींद मेरी बची हुई है, थोड़ा सा सो जाना है और बॉडी को वो अनवाइंड करते हुए रिलैक्स करना है। वैसे आपका क्या प्लान है वीकेंड का, जरा बताइए मुझे। 5000 1896 इज माई नंबर, लेट्स कनेक्ट हियर। कतर का मौसम अभी तक साथ दे रहा है, एटलीस्ट शाम के वक्त तो दे ही रहा है, तो जरा बताइए क्या है, बाहर घूमने फिरने का प्लान है या शॉपिंग वॉपिंग का प्लान है। वेटिंग फॉर योर आंसर्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और याद रखिए जब भी आप खुश रहते हो ना तो एक आपका ऑरा, आपका वाइब, आपके आसपास के लोग आपके से खुश रहते हैं। तो बस यही उम्मीद करती हूँ कि आपका वीकेंड बहुत खुशी से जाए। टाटा बाय बाय सायोनारा, माइक से दिल तक आफ्टरनून लेती है अलविदा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: सर, आई डोंट नो व्हाट टू डू आफ्टर कॉलेज, आप बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए।
1: अरे तो सिंपल है ना, फटाफट कर जा, मम्मी इंतजार कर रही होगी।

0: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10। आप सुन रहे हैं मिर्ची वन कतर।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: यार ये छोटी सी जो बात है ना बहुत बड़ा असर छोड़ती है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back, and this is RJ Anshu with you. यार पता है क्या, बचपन से ही ना पापा मुझसे एक बात कहा करते थे कि आप किसी को देखकर उनकी जिंदगी का पता नहीं लगा सकते। शायद जो इंसान हमेशा हंसता हुआ दिखता है अंदर से बहुत टायर्ड हो, जो नॉर्मली रिप्लाई करता है मे बी इज फाइटिंग बैटल्स नोबडी नोज अबाउट, और इसलिए किसी को जाने पहचाने बगैर किसी कंक्लूजन में निकलना ये बहुत गलत बात है। लेकिन पता है क्या, इन सबसे ऊपर सबसे खास फीलिंग क्या है, किसी के दर्द को समझने की शक्ति रखना, जिसे हम एम्पथी कहते हैं। कभी कभी लोगों को सोल्यूशंस नहीं चाहिए होते, बस ऐसा कोई शख्स चाहिए होता है जो उन्हें समझ सके। अ लिटिल सॉफ्टनेस, अ लिटिल पेशेंस, अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग, और इसकी शुरुआत सबसे पहले आपके घर से होती है। हमेशा प्रैक्टिकल होना किसी बात का सोल्यूशन नहीं है, किसी के जज्बात को बस समझ उसे अपना लेना सबसे बड़ा आंसर है। वो कहते हैं ना, हर किसी से दर्द को समझा नहीं जाता, हर किसी से दिल का रिश्ता भी नहीं बनता। जो लोग खामोशी से साथ निभा जाएं, उनसे खूबसूरत कोई इंसान दुनिया में नहीं होता। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची फ्रेश माल
1: फुल ऑन मस्ती मैडनेस और जंगल के एडवेंचर के वाइब्स के साथ सुनो वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक

0: गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: Hello.
2: Is that Sanjeev?
1: Yeah, I'm speaking.
2: Hi Sanjeev, I am Atul calling from.
1: Okay.
2: संजीव, आपने 3 राउंड्स क्लियर कर लिए हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए। ये आपका फाइनल राउंड है जिसमें हम कैंडिडेट के पेशेंस चेक करते हैं, उसमें कितने पेशेंस है, कितना इत्मीनान है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस तरह की जॉब है। तो आपको लगता है कि आप में पेशेंस हैं सारे?
1: पेशेंस तो है, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया हुआ उसमें भी मेंशन है ये चीज।
2: ओके।
1: कई तरह के कस्टमर्स होते हैं, उनको सेटिस्फाइड करने हमारा काम है।
2: कितने साल जॉब करी है आपने इससे पहले?
1: मैंने 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव।
3: चुप कर, 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव।
1: सॉरी सर,
2: कैरी ऑन रखिए। आप बताइए मुझे अपने बारे में, ये मैं आपके पेशेंस चेक कर रहा हूँ। हाँ बताइए। भड़कता हुआ कस्टमर आता है, कॉल करता है, तो उसको किस तरह हैंडल करते थे?
1: कस्टमर्स आए, जब मैंने आपको बताया ना, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है। कई कस्टमर्स आते थे जिनको हम बहुत ही कूलली, बहुत पेशेंट के साथ उनको सेटिस्फाइड।
3: बकवास बंद कर, बकवास बंद कर, कूलली तू करता था, कूलली दांत अंदर कर,
1: हम करते थे सेटिस्फाइड कर।
3: चुप कर, बकवास बंद कर, बकवास बंद कर।
1: जैसे आप बोल रहे हो ना, ऐसी ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं वो लोग।
2: अच्छा, इससे ज्यादा दिखाते। अच्छा मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कोई कस्टमर ऐसा है जो कि मान ही नहीं रहा आपकी बात और वो डांटे जा रहा है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए?
1: सर, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले हमारी बात सुने।
3: शराब
1: बोलते हैं
3: शराब। अब टेस्ट तुम्हारा खत्म हो चुका, कोई पेशेंट चेक नहीं कर रहा। अब ये असलियत कह रहा हूँ, तुम्हें बोलने की तमीज है नहीं यार।
1: अभी तक
3: पेशेंट चेक कर रहे, लेकिन वाकई में तुझे तमीज ही नहीं है। मोबाइल के कस्टमर केयर में जॉब करने के लिए कह रहा है करूंगा, मोबाइल ने पकड़ा कभी हाथ में?
1: बोल
3: जॉब करूंगा, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनूंगा। कस्टमर इंसान तो बन जा पहले यार, इंसान बना नहीं है।
1: खुद को देखा आपने कभी?
2: संजीव, कोई इंटरव्यू की कॉल नहीं है, मुझे पता चला तुमने 3 राउंड दे चुके हो। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बना रहा था। लेकिन तुम पूरी तरह क्वालिफाई कर गए हो ये राउंड, तुम्हें जॉब मैं दूंगा। Okay. तुम मेरे शो में आके बैठो, मुझ पे भी कभी कभी डांट पड़ती है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

0: जुबिन नौटियाल की खूबसूरत सी आवाज़ यानी प्यारा सा खूबसूरत सा नया सा गाना, चलिए ये तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन इस नए से दिन में ये खास खबर भी आप तक पहुंचा दी जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: हेलो, वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आज अंशु विद यू। देखिए, गर्मी जब आती है ना हमारी ज़िंदगी में तो बहुत सारे इमोशंस को लेकर आती है। कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अगर कुछ होता है तो वो है इरिटेशन, क्योंकि जब वो इस चलचलाती हुई धूप में 5 मिनट भी बाहर खड़े रहना पड़े एंड रियलाइज हो कि भैया अंडे की भुर्जी बने ना बने लेकिन तुम्हारी ज़रूर बन रही है, तब लगता है ये मौसम जाए तो कब जाए। लेकिन गर्मी के मौसम में कोई तो एक चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में सुकून एंड खुशी लेकर 101% आती है, एंड दैट इज़ आम वाला सीजन, आम का मौसम, आम की बहार। एंड भाई साहब, जब मैंगो फेस्टिवल कतर में होस्ट या ऑर्गेनाइज होता है ना तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। देखिए, सबसे खास बात यह है मैं हूँ भारत से, इंडिया से, जहाँ पे तकरीबन 1000 से ज़्यादा वेराइटीज़ जो है ना मैंगो की प्रोड्यूस होती है। लेकिन क्या आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है, जितने आम इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं ना उसका सिर्फ और सिर्फ 1% ही इंडिया एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि बाकी पूरा का पूरा कंजम्पशन जो है इंडिया में ही हो जाता है। अब ज़रा सोचो कि हम इंडियंस हो गए, पाकिस्तानी हो गए, हम कितने बिग टाइम मैंगो लवर, वो बात अलग है कि कतर में आम का ये जो मौसम है साल के 8 महीने तो चलता ही चलता है, लेकिन ये अपने देश के आम की बात ही अलग है। तो भाई, अगर आपको लगता है कि आपको भी इंडियन मैंगोज का बहुत ज़्यादा शौक है तो हम्बा एग्जीबिशन जो है हमारी ज़िंदगी में शामिल हो चुका है। दिस इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन एसोसिएशन विद एम्बेसी ऑफ इंडिया कतर, एंड 18th ऑफ दिस मंथ से लेकर 27th ऑफ दिस मंथ यानी कि जून के महीने में आप बिल्कुल पहुँच सकते हैं सूक वाकिफ़ के ईस्टर्न स्क्वायर में, और बहुत सारी आम की वैराइटीज़ को आप टेस्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और यहाँ पे एक एडिड पॉइंट ये है, आम तो मिलते हैं लेकिन आम से बने हुए बहुत सारे खास डेलिकेसी पिए ना वो भी आपको मिलेंगी, चाहे अचार की बात करें, मिठाई की बात करें, वो चाट एंड गुपचुप की बात करें, मिलके पार्टी करें। कब आने वाले हो बता देना, पैसे आप भरना, कंपनी देने का काम मैं करूंगी। 5001896 विल गेट कनेक्टेड इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर या मिर्ची अंशु। अभी फिलहाल वेदांग रैना की आवाज में नीलांजना घोष के साथ एक बहुत ही प्यारा सा नया गाना है जो मैं आपको सुनाती हूँ। बड़ी प्यारी सी फिल्म है, इम्तियाज़ अली ने इसे डायरेक्ट किया, हमारी ज़िंदगी में जल्द शामिल होने वाली है। आप गाना एंजॉय करिए, बाकी डिटेल्स बाद में बताएंगे। बंदी का नाम अंशु।

जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि पहले आपको गाना एंजॉय करवाऊंगी, इसके बाद इसके डिटेल्स मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। तो एब्सोल्युटली इस गाने को अगर हम देखने की कोशिश करें तो इम्तियाज अली की अब तक की सबसे ज्यादा अवेटेड फिल्म की अगर हम बात करें तो उसमें से शायद ये एक हो, एंड फिल्म का नाम है मैं वापस आऊंगा। एंड इस फिल्म के अगर आप स्टार कास्ट को देखने की कोशिश करेंगे ना तो भाई इट इज़ अ ड्रीम टीम। इमेजिन करें एक ऐसी फिल्म जिसमें आपको दिलजीत दोसांझ नजर आए एक्ट करते हुए, नसरुद्दीन शाह नजर आए, वेदांग रैना जिन्होंने ना ही सिर्फ एक्टिंग की बल्कि इसके साथ ही बहुत ही खूबसूरत से गाने भी गाए, एंड शर्वरी जो इस वक्त पूरी तरह से ट्रेंडिंग चल रही है। ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन जब इम्तियाज अली के साथ मिले, एंड म्यूजिक की अगर हम बात करें वो ए आर रहमान की कॉम्पोजिशन हो, तो इस फिल्म का इंतजार भाई साहब हर एक बॉलीवुड लवर ना करे तो फिर क्या ही करे। चलिए जी, फिल्म जैसे ही आएगी इसका रिव्यू भी आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन अगला एक ऐसा गाना सुनाते हैं जो आज भी हमारे दिल में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं खलबली मचाने में कमी ना छोड़ता। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची स्टोरीज।
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझो।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Wow.
1: Well, Hadi Sandhuki Awaz, Kiran Bajwa ka saath, and what a power pack track it is. Bhai, tab in dino, Punjabi gaano ka trend jo hai kaafi alag hai. Notice kiya aapne? Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi, and this is Aaj Anshu with you. Well, aapki zindagi mein mithas ke saath spice ka tadka lagate hue ek bar phir se aa chuki hu. And dekhiye, baat itni hai, Punjabi gaano ka na scene hi alag hai. And meri life mein to aur bhi zyada alag hai. Gaana samajh mein aaye na aaye, lekin haan, vibe karne mein mujhe bada maza aata hai. Jaise na jaane main in gaano ki kitni expert ho chuki hu. Kahin na kahin bas maine hi likha hai. Aur haan, gaane ki bhi puri koshish ki hai. Wo baat alag hai ki ghar walon ne kaha ki beta bathroom ke bahar na nikalna. Tab decide kiya, theek hai bhai, gaana chhod ke baatein hi kare wahi achhi hai. Ghar wale izzat kare na kare, lekin aap log jo hai itne pyar se karte hain, bada maza aata hai. Lekin izzat is waqt zara hum inki kar le to behtar hoga, kyunki warna inhone decide kiya hua hai hamari zindagi mein kohram machane mein kahin koi kami na chhodenge.
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान.
1: वेदर अपडेट. हाँ जी, सूरज चाचू की बात कर रहे हैं. इतना ही कहना चाहूंगी, अगर लगता है कि इंसान जो है इंसान रहे, नेचुरल फाउंडेशन का लेयर आए दिन लगते ना रहे, एंड इसके साथ ही तुम्हारी जो है अंडा या पनीर भुर्जी ना बने, तो घर के अंदर रहो, गाड़ी के अंदर रहो, ऑफिस के अंदर रहो, लेकिन हाँ, इनसे आमना सामना इस वक्त करने की कोशिश ना करना. अगर आज के मैक्सिमम टेम्परेचर की मैं बात करूँ, सो इट इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 47. फीलिंग जो है 50-52 से कम बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल तुम्हारी उम्र की तरह. लेकिन अगर मिनिमम की बात करें, सो इट इज गोइंग टू बी अराउंड 35, मेरी उम्र से डबल. जस्ट स्टेडियम टू मिर्ची, पानी पीते रहें, कलेजन दिमाग की ठंडक के लिए सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. इट्स हॉट, एंजॉय. बिंदी का नाम अंशु.
3: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय आरएसएल ग्रुप ऑफ कंपनी. अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब. फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813.

0: Hollywood, Bollywood, Bold Eye. Only on Mirchi. It's hot.
1: बादशाह, आपने इतने गाने बनाए, इतने गाने कंपोज किए हैं, सबसे पहला रैप आपने किस पे लिखा था?
2: जो मैथ्स के टीचर है उन पे रैप लिखा था। टीचर अच्छे नहीं थे, क्योंकि एक जैसे टीचर होते हैं वैसे वो थे नहीं, तो मैंने उन पे रैप लिखा जो काफी मशहूर हो गया। दैट वाज माय फर्स्ट। दिक्कत तब हुई जब वो रैप उन्होंने ही पढ़ लिया, उसके बाद मेरा एजुकेशन पे से विश्वास ही उठ गया।
1: 2+2=4, बादशाह गिव अस मोर, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bold Eye.
3: Only on Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची फ्रेश माल,
1: हाई वोल्टेज बीट्स और अनस्टॉपेबल ग्रूव के साथ सुनो माशुका।

इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6, मिर्ची।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: सर वो क्या है ना, अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है, तो मुझे आप बताओ ना कि वो सुहागरात में कौन सा परफ्यूम लगा के जाऊं।
1: अरे शादी के दिन तो ना के जा।

0: वेल, ये पावर पैक गाना, धमाकेदार गाना, ये सब तो हमने सुन लिया, लेकिन भाई ये काम की बात भी जरा हो जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। एंड इसके साथ ही अगर आज के दिन को देखने की कोशिश करूँ तो यार ये बहुत ही ज़्यादा खास, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। एक बार फिर से उन लम्हों को, उन पलों को जीने की बारी आ चुकी है, वक्त आ चला है, जिन्हें हमने शायद आज से 4 साल पहले दिल खोल के जिया है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फीफा वर्ल्ड कप 2026। वेल, USA, कनाडा, मैक्सिको, ये 3 कंट्रीज़ मिलकर बिल्कुल आज से ही इस मैग्नानिमस इवेंट का, टूर्नामेंट का आगाज़ करने जा रही हैं। एंड इसके साथ अगर किक ऑफ मैच की आप बात करें तो मैक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका, ज़रा देखना है कि नज़ारा होगा तो होगा और कितना ही खूबसूरत होगा। कतर की हमारी अलनावी टीम जो है पूरी तरह से पहुँच चुकी है, कतर के सपोर्टर्स भी वहाँ पर पूरी तरह से पहुँच चुके हैं। एंड हम सब के लिए बहुत फ़ख्र की बात, बड़ी ही गर्व की बात कि पहली बार ऐसा हुआ है कि क्वालिफिकेशन राउंड में खुद को बाकायदा क्वालिफाई करते हुए कतर जो है फीफा वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना चुकी है। एंड अब ये दिखाता है कि फुटबॉल जगत में ग्रेजुअली धीरे धीरे फुटबॉल में कतर का बोलबाला जो है वो कितना ही बढ़ते जा रहा है। बढ़िया जी, हम तो दिल खोल के यहाँ पे फैन जोन्स पे बैठकर इन मैचेस का लुफ्त भी उठाएंगे, मजा भी उठाएंगे। चलिए मैं आपसे पूछने की कोशिश करूंगी कि अगर आपसे मैं पूछूं कि इस बार फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी कौन उठाने वाला है तो आपके हिसाब से वो कौन सी टीम है? 5000 1896 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची 1 कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: Milci.
1: Iskaba na puskaba na sakaba na rabana. Burga, burga. Na virtual burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: से बोल रहे हैं?
2: हाँ जी।
3: मुझे कुछ ऑर्डर करना था, आप लिख लेंगे प्लीज?
2: या
3: और रात के खाने के लिए लिख लीजिए प्लीज।
2: बोलिए।
3: 2.5 किलो अरहर दाल, 3 किलो चना दाल, 3.5 किलो चना कबूली, 4 किलो चना डॉलर प्रीमियम, 1 बेसन। हाँ,
2: एक्चुअली में 2.5 किलो वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता, 2-2 किलो में, 1-1 किलो में पैकिंग होती है, तो 2 kg।
3: अब आपको ये मैं क्या, वो 2.5 किलो ही खाते हैं, मैं क्या करूँ?
2: Oh my God.
3: मेरे हस्बैंड हैं, डाइट उनकी है, आपको क्या प्रॉब्लम है?
2: नहीं मैम प्रॉब्लम।
3: 4 किलो चना दाल, 4 किलो चना कबूली,
2: चना दाल, चना कबूली, एरोप्लेन भेजूं?
3: एरोप्लेन भेजिए, हमें जाना ना हनीमून पे।
2: सॉरी मैम, मैं ये बोल रहा हूँ 5 kg एरोप्लेन राइट मैम, सॉरी।
3: एक सेकेंड, कभी फोन आ रहा है। स्वीट हार्ट आई लव यू, ऑर्डर दे रही हूँ। तुम आओ तो सही ना। No, I will be waiting for you, my sweetheart, my Janu.
2: Hello.
3: One second, मेरे हस्बैंड से बात चल रही है, 1 second. कब आओगे रात में? अच्छा सुनो, मेरे लिए रात में वो लेके आना ना, वही वही कुछ पूछे कुछ पूछे. Okay, sweetheart, bye. हाँ लिखिए, 3 प्लेट गोलगप्पे।
2: गोलगप्पे नहीं होते,
3: चकोर दे दीजिए। गोलगप्पे नहीं है, चकोर वाले दे दीजिए।
2: है नहीं मैम हमारे यहाँ,
3: लंबे वाले
2: नहीं है वो।
3: अच्छा लास्ट फाइनली, मैं और मेरे हस्बैंड जो बहुत शौक से खाते हैं,
2: क्या खाते हैं
3: मैम? मुर्गा
2: मैम, वो भी नहीं है।
3: आपको ये नहीं मालूम दिल्ली में सबसे अच्छा मुर्गा कहाँ बनता है?
2: मैम ये हमें नहीं पता।
3: हमें मालूम है, मैं बताऊँ आपको?
2: हाँ जी मैम बताइए।
4: रेडियो मिर्ची, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं छोटा सा मजाक कर रहा था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया भाई साहब हमने।
2: आपकी आवाज में काफी कुकुड़कू।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: के लिए काफी राहत है ये भी तय।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, इस वक्त Ministry of Education and Higher Education की तरफ से जितने भी parents हैं उनके लिए एक बहुत ही राहत वाली खबर हमारे बीच आ ही चुकी है। Well, जरा सोचने की कोशिश करें कि आज स्कूल से मैसेज आया है कि फीस जो है वो इंक्रीज हो गई है एंड अगले एकेडमिक ईयर से ही आपको ज्यादा पेमेंट करना ही होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है इसका कैलकुलेशन पूरी तरह से हिल ना जाए, भाई साहब होता है ना। लेकिन अब कदर की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड पेरेंट फ्रेंडली स्टेप अनाउंस किया है। पहली बार अगर किसी प्राइवेट स्कूल की फीस को इंक्रीज करना है एंड ये इंक्रीमेंट जो है अप्रूव हो जाता है, इन दैट केस पेमेंट के इंक्रीज को इम्प्लीमेंट करने से कम 18 महीने पहले ही सारे के सारे पेरेंट्स को नोटिस दे दी जाएगी, यानी कि पूरा 1.5 साल का समय। एंड ऑनेस्टली ये सिर्फ जो है फाइनेंसिस की बात नहीं है, स्कूल चेंज करना या फीस स्ट्रक्चर एडजस्ट करना सिर्फ पेरेंट्स के लिए चैलेंजिंग नहीं होता यार, बच्चों के लिए भी इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है। तो अब अगर ऐसा कुछ होने जा रहा है तो फैमिलीज को मिलेगा मौका कि वो पहले से ही इस बात के से अवगत हो सके, अपने फाइनेंसिस को अकॉर्डिंगली मैनेज कर सके, या उन्हें लगता है कि भैया बच्चों को किसी और स्कूल में भेजना है तो उसकी तैयारी कर सके एंड किसी और स्कूल में जाने से पहले ही बच्चे जो है इमोशनली मेंटली पूरी तरह से सेट हो सके। तो ये जो बात है सबके लिए राहत वाली है। तो अब जब राहत जिंदगी में आई है तो एक काम करते हैं, मुंह मीठा कराते हैं। नहीं, खुशी चाहे छोटी सी हो बड़ी हो राहत वाली हो हमेशा ना दिल खोल के मनानी चाहिए, भाई हमारा तो यही मानना है। एंड खुशी जो है ना बांटने से बढ़ती है, तो जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हो बता हम पहुंच जाएंगे। शिल्पा राव की आवाज कैरोलिसा मंटेरियो का साथ एंड ए पावर पैक गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: में ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
8: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

Well, Romain Danish Pakshi ki power pack awaz and ye gazab ka gana from the film Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya. Ye to maine suna diya, lekin yaar ek baat hota hai ki jab bhi main aapki zindagi mein aati hu, aapki life ki sari uljhne jo hai na, wo kam karne aati hu. Mirchi Anshu. Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, zindagi mein mithas ke saath spice ka tadka ghulte hue ek baar phir se aa chuki hu. Yaar pata hai kya? आश्रम में एक बात सोच रही थी, क्या आपने अपने बारे में एक बात नोटिस की है कि जब आप खुश होते हैं ना, तब आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं. आपको सेलिब्रेट करने का मन होता है, अपने फ्रेंड्स को बताने का मन करता है, फैमिलीज के साथ कुछ ओकेजन को खास तरह से अच्छी तरह से बिताने का मन करता है. लेकिन जब आप कभी दुखी होते हैं, जब आप कभी उदास होते हैं, जब आप कभी बीमार होते हैं, तब आपकी ज़िंदगी में शायद वो कोई एक खास इंसान होता है जिसकी याद जो है ना आपको सबसे पहले आती है. खुशी के वक्त में शायद सबसे पहले उस इंसान की याद आए ना आए, लेकिन जब आप कभी बीमार हैं, गम में या दुखी हैं, तो वो एक इंसान जो है ना इंस्टेंट याद आता है. एंड ऐसे मौके पे, ऐसे वक्त पे जो इंसान आपको याद आए ना, बस ये समझ जाना ज़िंदगी में आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत प्यार इश्क अगर है, आप सबसे ज़्यादा किसी को मानते हैं, तो बस वही शख्स है. यार पता है, हम ना डे टू डे लाइफ में कभी कभी इतने खो जाते हैं और रिश्तों को निभाते निभाते इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ना जो सबसे प्रेशियस लोग हैं उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, उन्हीं की इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं. और ऐसे वक्त में हमें याद आता है कि यार ये इंसान मेरे सबसे ज़्यादा करीबी है, क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया में कोई काम आए ना आए, ये मेरे ज़रूर काम आएगा, और शायद इसीलिए हमें उसकी सबसे ज़्यादा याद आती है. तो अगर ऐसा कोई शख्स है तुम्हारी ज़िंदगी में, इतना ही कहना चाहूँगी, रोज़ चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, यार उसे एक खास महसूस कराना ना भूलें, उसे ये बताना या जताना ना भूलें. माना कि प्यार जो है कहने की बात नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है कि उस प्यार को एक्सप्रेस कर ही दिया जाए. अगर बात अच्छी लगी तो एक थम्सअप भेजो या थैंक यू बोलो. 5000 1896, लेट्स गेट कनेक्टेड देयर. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. मीनवाइल जुबिन नौटियाल की आवाज़ यानी अगला प्यारा सा गाना एन्जॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: श्रेयस तलपड़े आपकी सबसे पहली हिंदी फिल्म इकबाल थी, लेकिन क्या आपको याद है सबसे पहला गाना आपने कौन सा शूट किया था?
3: एक्चुअली टेलीविजन सीरियल का हमने एक टाइटल सॉन्ग शूट किया था, तो आई थिंक दैट प्रोबब्ली वाज द वन व्हिच वाज माय फर्स्ट सॉन्ग एज सच। मराठी गाना था वो, टाइटल था सीरियल का बेधुंद मना चल लहरी। इट वाज लाइक बेधुंद मना ची लहर लहरीचा होती लाटा लाटा होता कहर किनारा शोधती हजार वाटा।
2: श्रेयस, यू आर नॉट ओनली अ गुड एक्टर, यू आर अ फाइन सिंगर। मुझे लगता है आपको ये वाला ऑप्शन अब एक्सप्लोर करना शुरू कर लेना चाहिए। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पी कक्कड़ का साथ, सिद्धार्थ महादेवन का साथ, दिल धड़कने दो, सुनसे गाना तो मैंने सुना दिया, लेकिन पहली बार क्या हर बार जो है हम आपसे ये सवाल कर ही लेते हैं।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ. एंड इसके साथ ही बहुत ही सारी एक्साइटिंग ऐसी बातें हैं जो इस वक्त मुझे आपके बीच पेश करनी है. Well, एक बात बताएं, अगर हम समर्स की बात करते हैं तो आपके जहन में सबसे पहले अक्सर क्या ही आता है? अगर मैं अपनी कहानी बताने की कोशिश करूं तो अगर बचपन के समर्स की बात करूं तो ठौर ठिकाना अड्डा जो है ना मेरी लाइफ का एक ही हुआ करता था, एंड दैट यूज टू बी मेरी नानी का घर. यार आज के बच्चों के चोचले हैं, आज के बच्चों की 10 ख्वाहिशें हैं कि इस वेकेशन में इधर जाना है उधर जाना है. भैया हमें तो हर साल अगर कहीं जाना होता था तो सिर्फ और सिर्फ नानी का घर, वही घर जहाँ उस बड़े से हॉल में हम जो 10 बच्चे हैं एक साथ सोया करते थे, नीचे गद्दी लगा के रात रात भर डांट पड़ने पर भी मस्ती किया करते थे. लेकिन ना, हम क्या मस्ती करेंगे, हमसे ज़्यादा मस्ती जो है मम्मी और मासी क्या करती थी, मामी लोगों के साथ मिलके. क्या दिन थे यार, एक ही जगह जाना, वो घूमना फिरना, शाम को पूरी टोली का निकलना, वो चाट के ठेले में खड़े होकर बहुत सारे देर तक चाट का मजा उठाना, फिर वो जाकर वो बर्फ गोला खाना, नहीं तो फालूदा खाना, नानी का प्यार, मम्मी की फटकार में नानी की उनको फटकार, वो दौर जो है ना याद आता है, बहुत याद आता है. बड़े हो गए लेकिन बचपने के साथ नानी का वो घर भी जो है ना कहीं पीछे छूट गया. आई एम प्रीटी श्योर हम में से मैक्सिमम लोगों की जो याद है ना बिल्कुल मेरी तरह होगी, आपकी कहानी बस मेरी जुबानी होगी. लेकिन इतना बता दूं, अगर आपको लगता है कि भैया इस बार की गर्मियों में आप नानी के घर का वो मज़ा है लुत्फ़ नहीं उठा पा रहे हैं, कुछ रीज़न से आप जो है कतर में ही रह जा रहे हैं, तो इस बार कतर में बहुत कुछ ऐसा खास है जो आपके समर वेकेशन को काफ़ी अच्छा एंड एक्साइटिंग बनाएगा. चलिए जी, एक ऐसे इवेंट की बात करूँ जो 1 जुलाई को शुरू होगा एंड चलेगा 31 जुलाई तक, दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर. तो उस जगह का नाम है कतर टॉय फेस्टिवल. बहुत ही एक्साइटिंग सा इवेंट. इस बार का एडिशन जो है बहुत बड़ा है, मैग्नानिमस है. देर इज मोर टू इमेजिन एंड देर इज अ वर्ल्ड, होल वर्ल्ड ऑफ फन. बस थीम भी यही है. तो विजिट कतर ने इसके अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर ली है. हालांकि समर के चलते बहुत सारे एक्साइटिंग इवेंट्स आपकी लाइफ में शामिल होते रहेंगे. बाकी घर की याद हम अच्छी यादों के साथ यूं ही आपको दिलाते रहेंगे. टिक्के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची इट्स हॉट. बंदी आपके साथ अंशु है. एंड अगर ये नानी की कहानी आपसे रिलेट हुई तो यार एक हाँ अंशु, थम्स अप अंशु, कुछ तो मैसेज भेज दो, मजा आता है. 5000 1896. लेट्स गेट कनेक्टेड देयर. अर्जित सिंह की आवाज में अगला गाना सुनिए, एंजॉय.

0: Hey, welcome back. You're listening to Me Team Mirchi and this is Aaj Anshu with you. जब एक्सचेंज के रेस इतने कमाल हो तो आप उन्हें सुनने के बाद वाओ ये ना बोले तो फिर क्या ही बोले. Well, पब्लिक अगर अकाउंट में अच्छे अच्छे पैसे हैं तो फटाफट से उन्हें ट्रांसफर करने की तैयारी जो है आप कर ही दें. वो बस इसलिए क्योंकि आईपी मनी में अच्छी एक्सचेंज रेट्स का इस वक्त गजब बोलबाला है. वैसे अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो वन रियल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.22, पाकिस्तानी रुपीज 76.73, लंकन रुपीज 91.03, नेपाली रुपीज 41.89 एंड साथ ही बांग्लादेशी टका 33.75. तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां. बाकी आपकी जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने का काम तो हम कर ही देते हैं. ओनली उनका तो नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. इट्स हॉट एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.
1: लाया आई पे बेस्ट एक्सचेंज रेट्स, भेजो खुशियाँ और पैसे दोनों ही घर पे.
2: मिर्ची फ्रेश माल,
3: फुल ऑन मस्ती, मैडनेस और जंगल के एडवेंचर के वाइब्स के साथ सुनो वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक.

0: गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो
2: हेलो सुनील जी।
1: हाँ जी
2: सुनील जी, पेट्रोल पंप से बोल रहा हूँ। सर कंग्रेचुलेशन, आप लकी विनर हैं।
1: किस चीज के जी सर?
2: सर आपका 20 लीटर पेट्रोल निकला है बिल्कुल फ्री। मैं तो सोच रहा था बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि पेट्रोल के
1: यार, बहुत बढ़िया, बड़ी।
2: तो सर ये आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको फिल कराना होगा, भरवाना होगा अपनी गाड़ी में।
1: ठीक है, अच्छा एक बात तो बताइए सर जी।
2: हाँ जी।
1: इसी का पैसे ऐसे देने पड़ेंगे कुछ?
2: नहीं सर, पैसे कोई नहीं, कोई पैसा नहीं।
1: कंडीशन वगैरह?
2: नहीं सर, कोई कंडीशन नहीं है। पुराने ग्राहक है, आप ऐसे कैसे कंडीशन रख लेंगे?
1: तो ठीक है, ग्राहक पुराने ग्राहक को आदमी थोड़ा अपने समझ के कहते ना, अपने कोई ज्यादा।
2: बस सर बिल्कुल फ्री है, पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे, एक छोटा सा काम करना पड़ेगा।
1: क्या?
2: पुराना लाइए नया ले जाइए।
1: क्या भैया पुराना क्या लाऊं भाई?
2: पुराना पेट्रोल लाओ नया ले जाओ सर, बस यही है। और वो भी आप ही का निकला।
1: क्या बात हुई, पुराना कहाँ से लाऊं
2: सर? पुराना जो आपने
1: पुराना तो जल के वो खत्म कर दिया हो
2: तो सर, जो आपने पुराना यूज किया होगा वो तो लाना पड़ेगा ना आपको।
1: धुआं में कहाँ से इकट्ठा करूँ?
2: पहले तो आप बड़े दांत फाड़ रहे थे जब मैंने आपसे कहा 20 लीटर फ्री पेट्रोल है, वाह वाह जी वाह वाह थैंक यू। अब मैं आपसे कह रहा हूँ
1: पेट्रोल मिल गया तो वो तो बड़ी अच्छी बात है।
2: अरे अरे तो ये क्या
1: पुराना कहाँ से लाऊं?
2: पुराना आपको लाना पड़ेगा, ये भी मैं पुराना भी वैसे हर वक्त रोते रहते हैं पेट्रोल के पैसे बढ़ गए बढ़ गए। हम फ्री दे रहे हैं तो ला के नहीं दे सकते पुराना? यार कमाल कर रहे हैं आप।
1: पेट्रोल फालतू का, पुराना लाओ नया ले जाओ, ये ले जाओ।
3: अरे मेरी बात सर जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। अगर आप पुराना ले भी आए तो भी आपको 20 लीटर पेट्रोल फ्री नहीं मिलेगा। हाँ मुर्गा खाने को जरूर मिल सकता है।
2: सर मजा आ गया आपसे बात करके, मतलब आपके गुस्से से डर गया मैं।
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

बस कुछ गाने जो होते हैं ना, न जाने आप कितनी बार भी क्यों ना सुन लो, आप कभी बोर नहीं होते। मोहित चौहान की आवाज में ये जो गाना है ना यार, मेरी जिंदगी में यही रोल प्ले करता है। इनफैक्ट ये गाना जो है ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा एम्पावरिंग लगता है यार। एंड दिलजीत दोसांझ क्या कमाल लगे यार, आई जस्ट लव दैट गाय। समहाउ इतना बिंदास, अपनी मेहनत से अपने दम पे ऊपर उठ के आने वाला इंसान। देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो शख्स होता है जिसके ऊपर वाले की इतनी मेहरबानी होती है, शायद उसकी ज़िंदगी में उसके कर्म इतने अच्छे होते हैं कि ना उसको सब कुछ वो सिल्वर स्पून में, या कहते हैं ना गोल्डन प्लेटर में, यूँ ही मिलता है। किसी अच्छे घर में उसका जन्म होता है तो ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी होती, लेकिन उसके बाद अगर सिलसिला कुछ होता है तो वो होता है एक अच्छा इंसान बनने का, नेक काम करने का, या तो फिर उसके अलावा माँ बाप की जो जायदाद मिली हुई है, पूर्वजों ने जितना कुछ दिया है उसे और आगे बढ़ाने का, तो उसमें भी एक अलग कोशिश होती है। लेकिन कुछ लोगों की कहानी कुछ इस तरह से होती है कि क्लीन स्लेट से शुरू होती है, उसमें हर एक अक्षर जो लिखा होता है उनकी खुद की मेहनत का लिखा होता है। बहुत मुश्किलें होती हैं एक एक अक्षर को सीखने में, उसके बाद उसे शब्द बनाने में, शब्द बनाने के बाद कहते हैं ना एक लाइन से लेकर वो कहानी तक का सफ़र, कि वो कहानी सिर्फ उसकी ज़िंदगी की खुद की कहानी नहीं होती, बल्कि पूरी दुनिया उस कहानी को सुनती है, पढ़ती है, अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करती है, और इसके अलावा ना जाने कितने लोगों के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन जाती है। तो शायद दिलजीत दोसांझ जो है उनमें से ऐसे एक शख्स ज़रूर है। हैविंग सेड दैट, इतना ही कहना चाहूँगी यार, औरों की कहानी तो हम कई दफ़ा सुनते हैं, पढ़ते हैं, महसूस करते हैं, फ़ख्र भी फील करते हैं, भाई क्या बंदा है। खुद की ज़िंदगी की कहानी कुछ इस तरह से लिखो कि किसी और को ना सही, लेकिन तुम जब अपनी आंखें बंद करो तो तुम्हें ये फ़ख्र हो कि अपनी कहानी को हमने कुछ इस तरह से लिखा कि भाई हमारी ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल हुई, और ये बात हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बढ़िया है जी, हर दिन को अच्छे से जीना है, दिल खोल के जीना है, मस्ती में जीना है, अपने अलावा औरों के लिए भी अच्छा करते हुए चलना है। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ अब इस वक्त अगला गाना सुनाऊं, शायद माल्या की आवाज़ में, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु, टेक केयर।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: जा सिमरन, जा जी रहे अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
7: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
8: हिट गाने
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: यार क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के अंदर का जो डर होता है वो अंधेरा बाहर का है या तो फिर सही मायने में अंदर का है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aatyanshu with you. यार कभी कभी ना हम किसी चेहरे पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि हमें लगता है कि हमने उसे पूरी तरह से जान लिया है, लेकिन फिर एक दिन सच सामने आता है और सब कुछ बदल जाता है। लगता है कि यार क्या ये वही इंसान है, और शायद इसीलिए हमें मिस्ट्रीज इतनी पसंद है क्योंकि हर राज के पीछे एक कहानी और हर कहानी के पीछे एक सवाल होता है और कहीं ना कहीं एक इंसान। लेकिन इस वक्त मेरे पास आपके लिए एक और सवाल है। जरा सोचे, जब मैं करिश्मा कपूर का नाम लेती हूं तो सबसे पहले आपको क्या याद आता है? 90s की वो आइकॉनिक सॉन्ग्स, उनकी मिलियन डॉलर स्माइल, या फिर वो फिल्मों का दौर जहां करिश्मा कपूर हर दिल की फेवरेट हुआ करती थी। लेकिन इस बार पिक्चर थोड़ी अलग है। इस बार 90s की वो क्वीन रोमांस नहीं राज लेकर आ रही है, ग्लैमर नहीं डार्कनेस लेकर आ रही है, और शायद अपने करियर का सबसे इंटेंस अवतार भी। तो अगर आपको लगता है कि आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स, डार्क मिस्ट्रीज एंड वो स्टोरीज पसंद है, तो आपको हर सीन के बाद ये सोचने पर मजबूर होना होगा कि आखिरकार सच क्या है। सो गेट रेडी एज करिश्मा कपूर इज बैक एंड दिस टाइम शी इज टेकिंग यू इनटू द डार्केस्ट कॉर्नर्स ऑफ द ह्यूमन माइंड। देखिए ब्राउन, स्ट्रीमिंग फ्रॉम 12th ऑफ जून ऑन Z5। एंड याद रखिए, हर मिस्ट्री में एक कलर जरूर होता है, लेकिन हर मिस्ट्री का सबसे बड़ा राज अक्सर इंसान खुद होता है। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब भी ताल फिल्म देखती हूँ ऐश्वर्या राय बच्चन के पीछे एक क्यूट लड़का दिखता है और वो कौन है शाहिद कपूर. बट शाहिद इफ आई हैड टू आस्क यू अबाउट योर फिल्म जर्नी एंड योर फर्स्ट सॉन्ग कौन सा था वो.
2: मेरा पहला गाना था इट वॉज इन इश्क इश्क ऑब्वियसली. द फर्स्ट सॉन्ग वॉज दिस सॉन्ग वी डिड इन अ कैंटीन कॉल्ड लव लव लव करो वेयर ऑल द गाइज आर ट्राइंग टू Impress the women.
1: Shahid, what a lovely dive in nostalgia. Aap sun rahe hain Mirchi. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
3: Only on Mirchi. It's hot.

0: यार चलो आज का असाइनमेंट मैं आपको बता ही दूं।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aarti Anshu with you. देखो आज ना ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं करना है, सीधा अपनी फोटो गैलरी खोलना है एंड कोई तो 15 से 20 साल पुरानी तस्वीर को देखने की कोशिश करना है। एंड देखिए जैसे ही आप करेंगे ना, मैं गारंटी देती हूँ, पहले तो आप हंसेंगे, फिर थोड़ा शॉक होंगे और फिर ज़रूर कहेंगे भाई क्या ज़माना था। वो अजीब हेयर कट्स, वो रैंडम सेल्फीज, वो ब्लरी फोटोज एंड वो मोमेंट्स जिन्हें उस वक्त हमने इतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन आज जो है हमारे लिए सबसे प्रेशियस हो चुके हैं। लाइफ में ना बड़ी इंटरेस्टिंग है यार, जब हम किसी पल में होते हैं तब शायद उसकी वैल्यू समझ नहीं आती, लेकिन जब वो पल गुजर जाता है तब लगता है कि काश थोड़ा और जी लिया होता, है ना। इसलिए आज का दिन परफेक्ट होने का वेट ना ही करें, जो लोग आपके साथ हैं, जो पल आपके साथ है उसे दिल खोल के ना बस जी ही लो। तो यह आज के लिए अलविदा कहूं उसके पहले एक बात कहना चाहूंगी कि खुशियों का हिसाब कभी रखा नहीं जाता, मुस्कुराहट का कर्ज कभी चुकाया नहीं जाता, जो पल मिल जाए उसे हंसकर जी लो, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त फिर लौट कर आया नहीं जाता। तो बस आज के दिन को दिल खोल कर जीते, बाकी बातें और करेंगे। चिक्की बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: सर, आई डोंट नो व्हाट टू डू आफ्टर कॉलेज, आप बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए।
1: अरे तो सिंपल है ना, फटाफट कर जा, मम्मी इंतजार कर रही होगी।

Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.

0: आज लाइटर खराब हो गया ना, तो माचिस इस्तेमाल करनी पड़ी और मुझे आमिर खान का जुबान से माचिस बुझाने वाला वो गुलाम वाला जो एक्ट है ना, वो याद आ गया।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. आज लोग शायद बॉलीवुड एक्टर्स और फिल्म्स उतने पैशन से फॉलो नहीं करते हैं जितना कि बैक इन 90s किया करते थे। आई रिमेम्बर कि हमारी क्लास में ना एक लड़के ने आमिर खान का ये जलती माचिस को अपनी जुबान से बुझाने वाला एक्ट किया था, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स को बुला लिया गया था स्कूल में, एंड इट बिकेम अ बिग डील कि सब सेक्शंस के बच्चे इसके बारे में बात कर रहे थे, और स्कूल में सच थिंग्स यूज्ड टू बिकम अ ग्रेट डील। इसकी यादों का पिटारा, एंड नाउ यू ट्यून इन विद मी ऑन मिर्ची। आज लोग शायद बॉलीवुड एक्टर्स और फिल्म्स उतने पैशन से फॉलो नहीं करते हैं जितना कि बैक इन 90s किया करते थे। आई रिमेम्बर कि हमारी क्लास में ना एक लड़के ने आमिर खान का ये जलती माचिस को अपनी जुबान से बुझाने वाला एक्ट किया था, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स को बुला लिया गया था स्कूल में, एंड इट बिकेम अ बिग डील कि सब

हाँ, उन दिनों में फेमस होना यूज्ड टू बी अ बिग डील। स्कूल में फेमस वही होता था जो या तो प्रीफेक्ट्स थे, या कोकरिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे, या फिर कोई कांड करते थे। आज फेमस होने के लिए बस सोशल मीडिया का यूज करना आना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पर भी मैंने नोटिस किया है कि ऐसी ही कैटेगरीज होती है फेमस होने के लिए। जो लोग फिलॉसफी और लाइफ के डिसिप्लिन पर रील्स बनाते हैं वो प्रीफेक्ट्स हैं, जो क्रिएटिव रील्स बनाते हैं वो कोकरिकुलर एक्टिविटीज वाले हैं, और जो क्रिंज वीडियोस बनाते हैं वो कांड करने वाले लोग हैं। चलो जी, बातें तो अभी बहुत है, तो आगे बढ़ते हैं। मिड्डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हूँ और आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirci, burga. Burga.
2: हेलो
3: हेलो नवनीत
2: yeah.
3: नवनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ।
2: हाय नवेद,
3: क्या हाल चाल है?
2: बढ़िया है।
3: आपने मैसेज किया था अपने फादर का मुर्गा बनवाने के लिए।
2: हाँ हाँ हाँ, बन गया क्या?
3: यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने किस आदमी का नंबर दिया यार मुझे?
2: हाँ?
3: सोच समझ के नंबर देते हो नहीं देते हो? मैंने उनको फोन किया, वो मुझ पे भड़क रहे हैं यार शुरू में ही।
2: या, मैं तो अपने पापा का ही नंबर दिया।
3: पापा का नंबर, नाम क्या है यार पापा का?
2: मिस्टर दिलीप।
3: उनसे ही मेरी बात हुई है यार। मैंने माना, मजाक अपनी जगह है, मुर्गा बनाता हूँ, मैं भी हंसता हूँ, तुम्हें भी हंसाता हूँ, लेकिन यार ये थोड़ी है उसका नाजायज फायदा उठा लो तुम।
2: मैं क्या कुछ गलत
3: बोल दिया यार? मैं मतलब यहाँ पे इसलिए आता हूँ कि मैं गालियाँ सुनूँ यार?
2: अब ऐसी बात क्या
3: ऐसी हो ऐसी बात क्या हो गई? अपने फादर से पूछो यार जाके। नहीं, अपने फादर से क्यों नहीं पूछते तुम जाके?
2: अब मैं क्या
3: पूछूं यार, तुम्हें पहले कहना चाहिए था मुझसे कि उन्हें गुस्सा आता है, वो ज्यादा भड़क जाते हैं यार।
2: अब गुस्सा तो सभी को आता है, ठीक से बात कर ले।
3: तुम मुझे ये बताओगे कि मैं कैसे बात कर लेता यार? नवनीत कमॉन यार, ऐसे नहीं होता है। मैंने माना कि चलो एक शो है, मुर्गा बनाते हैं, उसमें ये थोड़ी यार क्या तुम उठा के किसी का भी नंबर दे दो, किसी का भी मुर्गा बनवा लो।
2: अब कुछ ज्यादा पापा ने बोल दिया।
3: अरे तो
2: तरफ से मैं माफी मांग,
3: माफी मांगने से क्या होता है यार? ऐसी मैं माफी मांग रहा था उनसे, मैंने माफी मांगी है 50, वो नहीं मान रहे। तुमने यार पता नहीं उठा के क्या समझ रखा है मुझे।
2: अब मैंने क्या, आपने बोला कि मुर्गा बनाना है, SMS कर दो, मैंने कर दिया।
3: तुम मुझे क्या पता था यार तुम अपने ऐसे फादर का नंबर दे दोगे यार?
2: ऐसे फादर क्या, मेरे तो एक ही फादर है, मैं ढूंढ के लाऊंगा।
3: अरे तो यार अब तुम उल्टे मुझसे बात कर रहे हो। एक तो पहले बाप की सुनिए, अब मैं बेटे की सुन लो। यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या?
2: मेरा खराब नहीं हो गया, मुझे लग रहा है आप ही का थोड़ा हो गया है।
3: इस वक्त तुम्हारा ही मुर्गा बन रहा है, मेरी तुम्हारी फादर से अभी तक बात भी नहीं। ऐसे अच्छे काम होते रहते हैं यहाँ पर। वैसे तुम्हारे फादर के वाकई में गुस्से वाले हैं?
2: नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, कभी कभी तो गुस्सा कर ही देते।
3: चलो एक बार प्यार से मेरे साथ उनकी तरफ से बोल दो।
2: कुकड़ुकू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: पावर्ड बाय आईपे, बेस्ट रेट नो स्ट्रेस, आईपे वॉलेट का भरोसा। डाउनलोड कीजिए आज ही आईपे, द बेस्ट रेमिटेंस रेट इन कतर। Pizza Partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Ghoot Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट। चाइनीज, मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डीज तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट, जो है एस दानो एसिस में। स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त।
1: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, शॉपिंग, डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल। अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन।
2: Hygiene partner, hygiene from clean skin to healthy life. Experience total protection with hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
3: Sugar-free partner, Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: Jewelry partner Sky Jewelry. हर पल को बनाए खास Sky Jewelry के साथ elegant designs, dazzling collections और हर budget के लिए perfect jewelry. Shop now and enter the mega draw on June 23rd for a chance to win a brand new Lexus car. Sky Jewelry, design for generations.
5: Refreshment partner Baladna Milk, Laban Yogurt. Experience the fresh, creamy taste that Qatar loves. Refreshing every moment with every sip and spoon.
0: Fragrance partner Faridi Perfumes Gallery. Make every moment unforgettable with premium Arabic and French fragrances crafted for every style. Visit our Al Saad branch, Faridi Perfumes Gallery. Luxury you can wear. Visual media partner Rehab Media.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मर्डर मूवी की रिलीज के बाद इमरान हाशमी के गालों से सीरियल किसर का टैग ऐसे लगा था जैसे कि गाल पर लिपस्टिक का निशान।
0: मिर्ची VCR।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और इस टैग से उन्हें नवाजा गया आफ्टर पीपल वॉच्ड हिम इन मर्डर। दिस फिल्म वॉज अ फिल्म जिसकी लोगों ने बुराई भी की थी, लेकिन फिर देखा भी, क्योंकि ये फिल्म तो हिट हुई थी यार। एंड दैट ऑफ कोर्स इज बिकॉज ऑफ द पब्लिक। दिल तो सबका था फिल्म को देखने के लिए, लेकिन दुनियादारी के चलते मूवी को अश्लील बोलना पड़ा होगा बाबू मुशाए। बट मैंने ये फिल्म आज तक नहीं देखी, पता है, क्योंकि बचपन में हमें ये देखना अलाउड नहीं थी। और बड़े होने के बाद दिस फिल्म नो मोर वॉज अ बिग डील, क्योंकि फिर तो न जाने क्या क्या मूवीज में देखने को मिलने लगा यार। हाँ, लेकिन मैंने अनफेथफुल देखी है, जिसकी रीमेक वॉज मर्डर। बट आपको पता है, इमरान हाशमी को पता ही नहीं था कि उनका ये फिल्म करना उनके लिए इतना अजाब हो जाएगा कि उन्हें सीरियल किसर के साथ इतनी ट्रोलिंग मिलेगी। बताऊंगी इस बारे में मोर इन अ वाइल। अभी के लिए कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
8: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: इमरान हाशमी अपनी मूवी मर्डर के प्रीमियर पर अपनी फैमिली के साथ गए थे, इंक्लूडिंग हिज नानी.
0: मिर्ची चैट रूम.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड मूवी के दौरान और बाद में भी इमरान को थोड़ा टाइम लग गया ये समझने में कि व्हाई हिज नानी एंड हिज फैमिली वर ग्रंटिंग अबाउट द फिल्म एंड द एडल्ट सीन्स देयर, क्योंकि वो हकीकत से कई हजार किलोमीटर दूर थे. रीजन कि वो इंग्लिश फिल्म ही देखा करते थे एंड ही हैड नो आइडिया कि इंडियन ऑडियंस के लिए इट इज अ बिग डील. और जब पता लगा तो बहुत देर हो चुकी थी. लेकिन अपने टाइम में मर्डर जैसी बोल्ड फिल्म वॉज एन अनकॉन्शियस स्टेप टेकन टू ब्रिंग इन अ चेंज लोगों और बॉलीवुड के पर्सपेक्टिव्स में, क्योंकि ये वो फिल्म है जिसने एट दैट टाइम पीडीए और फ्रेंच किसेस के चलन को हवा दे दी और फिर डायरेक्टर्स को एक ऑन स्क्रीन किस दिखाने के लिए दो फूलों को आपस में भिड़ाना नहीं पड़ता था बाबू भैया. और भिड़ने से मुझे याद आया मलिका शेरावत, इमरान हाशमी और अश्मित पटेल के बीच की भिड़ंत. बहुत मसाला है, आगे जो भी सुनिएगा डाइजीन लेकर सुनिएगा. यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: बादशाह, आपने इतने गाने बनाए, इतने गाने कंपोज किए, सबसे पहला रैप आपने किस पे लिखा था?
3: जो मैथ्स के टीचर है उन पे रैप लिखा था। टीचर अच्छे नहीं थे, क्योंकि एक जैसे टीचर होते हैं वैसे वो थे नहीं, तो मैंने उन पे रैप लिखा जो काफी मशहूर हो गया। दैट वाज माय फर्स्ट। दिक्कत तब हुई जब वो रैप उन्होंने ही पढ़ लिया, उसके बाद मेरा एजुकेशन पे से विश्वास ही उठ गया।
2: 2+2=4, बादशाह गिव अस मोर, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: हेल्पलाइन?
1: बिल्कुल, मिर्च हेल्पलाइन का नंबर है।
0: मेरे बॉस की सारी गलती की ओनरशिप हर बार मुझे ही लेनी पड़ती है, क्या करूं?
1: अरे तो बॉस को बोल दो कि ये कंपनी भी उनकी एक गलती है।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे अलकट हंस।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: 36x2 कितना होता है? बस उतना ही आंकड़ा मलिका शेरावत और मर्डर मूवी के मेल लीड इमरान हाशमी और अश्मित पटेल के बीच था।
2: ये है 90 की गप्पे।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, there was this one time जब इमरान हाशमी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके मलिका शेरावत के साथ जो ऑन स्क्रीन किसेस थे ना, they were the worst of his career, since he just disliked kissing her. क्योंकि they had a fallout. And not just इमरान, there was this one time जब मलिका ने अश्मित को अक्यूज किया था कि अश्मित ने उन्हें जानबूझकर पुश किया था, which was not really the case. और ये प्रूव भी कर दिया गया था सिंस आसपास और भी लोग थे, लेकिन मलिका की तरफ से कभी कोई अपॉलोजी नहीं आई टू अश्मित। सीन कुछ ऐसा था ऑन द सेट्स ऑफ मर्डर कि आती थी मलिका शेरावत और बाकी सारे यूज्ड टू खैर मनावत। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, puscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
1: Hello.
2: Is that Sanjeev?
1: Yeah, I'm speaking.
2: Hi Sanjeev, I am Atul calling from...
1: Okay.
2: संजीव आपने 3 राउंड्स क्लियर कर लिए हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए. ये आपका फाइनल राउंड है जिसमें हम कैंडिडेट के पेशेंस चेक करते हैं, उसमें कितने पेशेंस है, कितना इत्मीनान है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस तरह की जॉब है. तो आपको लगता है कि आप में पेशेंस हैं सारे?
1: पेशेंस तो है, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया हुआ उसमें भी मेंशन है जी.
2: ओके.
1: कई तरह के कस्टमर्स होते हैं, उनको सेटिस्फाइड करने हमारा काम है.
2: कितने साल जॉब करी है आपने इससे पहले?
1: मैंने 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
3: चुप कर. 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
1: सॉरी सर.
2: कैरी ऑन रखिए. आप बताइए मुझे अपने बारे में. ये मैं आपके पेशेंस चेक कर रहा हूँ. हाँ बताइए. भड़कता हुआ कस्टमर आता है, कॉल करता है, तो उसको किस तरह हैंडल करते थे?
1: कस्टमर्स हैं, जब मैंने आपको बताया ना, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है. इस टाइप के कई कस्टमर्स आते थे जिनको हम बहुत ही कूलली, बहुत पेशेंट के साथ उनको सेटिस्फाइड.
3: बकवास बनकर कूलली तू करता था. कूलली दांत अंदर कर.
1: हम करते थे सेटिस्फाइड कर.
3: बकवास बनकर
1: जैसे आप बोल रहे हो ना, ऐसी ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं वो लोग.
2: अच्छा, इससे ज्यादा दिखाते. अच्छा मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कोई कस्टमर ऐसा है जो कि मान ही नहीं रहा आपकी बात और वो डांटे जा रहा है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए?
1: सर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले हमारी बात सुने.
3: शराब अब टेस्ट तुम्हारा खत्म हो चुका. कोई पेशेंट चेक नहीं कर रहा. अब ये असलियत कह रहा हूँ, तुम्हें बोलने की तमीज है नहीं यार.
1: अभी तक
3: पेशेंट चेक कर रहे, लेकिन वाकई में तुझे तमीज ही नहीं है. मोबाइल के कस्टमर केयर में जॉब करने के लिए कह रहा है करूंगा. मोबाइल ने पकड़ा कभी हाथ में?
1: बोल
3: जॉब करूंगा, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनूंगा. कस्टमर इंसान तो बन जा पहले यार. इंसान बना नहीं है.
1: खुद को देखा आपने कभी?
2: संजीव कोई इंटरव्यू की कॉल नहीं है. मुझे पता चला तुमने 3 राउंड दे चुके हो. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बना रहा था. लेकिन तुम पूरी तरह क्वालिफाई कर गए हो ये राउंड. तुम्हें जॉब मैं दूंगा. तुम मेरे शो में आके बैठो. मुझ पर भी कभी कभी डांट पड़ती है.

0: बस यही तो चाहिए यार आज के टाइम पे, 90s वाली मोहब्बत कि यार एक बार तुमसे मोहब्बत कर ली, तुमसे प्यार कर लिया ना, उसके बाद सोचेंगे नहीं, पलट कर सवाल नहीं करेंगे कि क्यों तुमसे मोहब्बत करी। दीवाना फिल्म से दिस गाना कुमार सानू की आवाज में।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अब वो धुन मेरे यारा जो कि आपको कंफ्यूज करने के लिए चलाई जाएगी, लेकिन मैं जानती हूँ आप हो तो बड़े कमाल के, पकड़ ही लोगे कि ये जो दो धुने मैं आपके लिए चलाने जा रही हूँ, ये दो धुने कौन से दो गानों की है। तो चलो जी, चैलेंज एक्सेप्टेड आपकी तरफ से, तो मैं देती हूँ आपको चैलेंज एंड दीज आर द दो धुन्स आज के लिए। तो मान ना मान करो गानों की पहचान और फटाक से डीएम करो अपना नाम, अपनी सिटी और वो दो गाने जिनकी धुने आपने अभी सुनी है। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मिर्ची सारा, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: अकेले हम अकेले तुम, ये तो फिल्म का नाम था, लेकिन इस म्यूजिक को बनाते हुए अन्नू मलिक अकेले नहीं थे, क्योंकि उनके साथ साथ बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के म्यूजिक भी तो थे, जिसमें से कॉपी करके उन्होंने ये गाना बनाया।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, अन्नू मलिक कंपोज किया गया ये वाला गाना।

अब जब बात चली है तो दूर तलक जाएगी, लेकिन मैं आपको यही सेम गाना नहीं सुनाएगी, अकेले हम अकेले तुम से ही मैं ना अपना फेवरेट ट्रैक सुनाती हूँ आपको, कमिंग अप कुमार सानू एंड अलका याग्निक की आवाज में। और सुनो, गाना सैड सिचुएशन पर है लेकिन म्यूजिक कॉम्पोजिशन इज ब्यूटीफुल, तो लिसन टू द ब्राइटर साइड ऑफ द सॉन्ग एंड एंजॉय द ट्रैक। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या आप भी अपने स्मार्टफोन्स की एडिक्शन से परेशान हैं? मैं भी यार, तो फिर क्या किया जाए?
2: आज की बात 90s के साथ।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, I think वापस टिक-टिक वाले फोन पर जाया जाए अगर हम स्मार्टफोन एडिक्शन से थक गए हैं तो। And you know what? Surveys say कि many people, including Gen Zs, have already begun to switch to these tick-tick वाले old school phones. But honestly, अगर मैं ऐसा करना शुरू कर दूँ ना, तो मेरी productivity by 50% ऊपर चली जाएगी. And that is quite a lot, I swear, यार. Keypad phones का जमाना कितने सुकून का हुआ करता था ना? लोग एक दूसरे से सिर्फ फोन पर बात करते थे, मतलब की बात करते थे, और बाकी फिर फोन साइड में रख दिया करते थे. जब आमने सामने हुआ करते थे तो एक्चुअली में एक दूसरे से बात करते थे, फोन पर नहीं रहते थे. याद है इमोजीज बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी? दो डॉट्स, एक एस्ट्रिक्स और एक क्लोज ब्रैकेट से एक आंख मारता हुआ इमोजी बनता था. अगर हम वापस टिक-टिक वाले फोन्स पर आ जाएं तो क्या होगा? इज इट अ थम्स अप और अ थम्स डाउन आइडिया? डीएम करके बताओ मुझे ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा. अभी के लिए ये अगला गाना आ रहा जो कि मुझे ये याद दिलाती है कि पहले छोटी छोटी रातें भी लंबी हो जाया करती थी, लेकिन थैंक्स टू स्मार्टफोन्स अब तो लंबी लंबी रातें भी फोन पर कहां कट जाती हैं पता ही नहीं लगता है. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Milci. Piska bana, puska bana, saka bana. Rabana. Burga, burga. Na wiet bala burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: से बोल रहे
1: हैं? हाँ जी।
2: मुझे कुछ ऑर्डर करना था, आप लिख लेंगे प्लीज?
1: या
2: और रात के खाने के लिए लिख लीजिए प्लीज।
1: बोलिए।
2: 2.5 किलो अरहर दाल, 3 किलो चना दाल, 3.5 किलो चना कबूली, 4 किलो चना डॉलर प्रीमियम, 1 बेसन। हाँ,
1: एक्चुअली में 2.5 किलो वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता, 2-2 किलो में, 1-1 किलो में पैकिंग होती है, तो 2 kg।
2: अब आपको ये मैं क्या, वो 2.5 किलो ही खाते हैं, मैं क्या करूँ?
1: ओह माय गॉड,
2: मेरे हस्बैंड हैं, डाइट उनकी है, आपको क्या प्रॉब्लम है?
1: नहीं मैम प्रॉब्लम।
2: 4 किलो चना दाल, 4 किलो चना कबूली,
1: चना दाल, चना कबूली, एरोप्लेन भेज दूँ?
2: एरोप्लेन भेजिए, हमें जाना ना हनीमून पे।
1: सॉरी मैम, मैं ये बोल रहा हूँ 5 kg एरोप्लेन राइट मैम, सॉरी।
2: एक सेकेंड, कभी फोन आ रहा है। स्वीट हार्ट आई लव यू, ऑर्डर दे रही हूँ। तुम आओ तो सही ना। No, I will be waiting for you, my sweetheart, my Janu.
1: Hello.
2: One second, मेरे हस्बैंड से बात चल रही है, one second. कब आओगे रात में? अच्छा सुनो, मेरे लिए रात में वो लेके आना ना, वही वही कुछ पूछे कुछ पूछे. Okay, sweetheart, bye. हाँ लिखिए, 3 प्लेट गोलगप्पे.
1: गोलगप्पे नहीं होते मैम
2: हमारे, चकोर दे दीजिए. गोलगप्पे नहीं है, चकोर वाले दे दीजिए.
1: है नहीं मैम हमारे यहाँ,
2: लंबे वाले
1: नहीं है वो.
2: अच्छा लास्ट फाइनली, मैं और मेरे हस्बैंड जो बहुत शौक से खाते हैं.
1: क्या खाते हैं
2: मैम? मुर्गा
1: मैम, वो भी नहीं है.
2: आपको ये नहीं मालूम दिल्ली में सबसे अच्छा मुर्गा कहाँ बनता है?
1: मैम ये हमें नहीं
2: पता. हमें मालूम है, मैं बताऊँ आपको?
1: हाँ जी मैम बताइए.
3: रेडियो मिर्ची. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं छोटा सा मजाक कर रहा था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया भाई साहब हमने.
1: आपकी आवाज में काफी
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Chidji,
2: यादों को चिट्ठी।
1: बचपन में तुम हमारे घर से स्टेप आउट करने की वजह हुआ करती थी। अगर कोई बड़ा पूछता कि कहाँ जा रही हो तो जवाब एक ही आता था, चिज्जी लेने जा रही हूँ। और तुम चिज्जी भले ही टर्म एक थी लेकिन तुम अम्ब्रेला टर्म थी। तुम्हारे अंडर भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें आ जाती थी, नटखट, इलू इलू, टॉफी या मीठी सिगरेट्स या फिर चूरन, कई सारे ऑप्शंस थे। और अगर कोई और लंबी दुकान की तरफ काम से जा रहा होता था ना, तो 2 या 5 रुपए उसे पकड़ा कर बस इतना कहते थे कि सुन, मेरे लिए भी चिज्जी लेते आना ना। और उस बजट में जो भी आता वो अगला इंसान हमारे लिए वही खरीद ले आता, विदाउट अस एक्सप्लेनिंग कि लाना क्या है। क्या अंडरस्टैंडिंग थी हमारे बचपन की तुम्हारे नाम के साथ। आज देखो वक्त बदल गया है, अब चिज्जी से हमारा दिल नहीं बहलता। और चिज्जी की क्या ही बात कहूँ, एप्पल का फोन भी आ जाए ना तो भी कुछ दिनों बाद दिल कहीं और ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बोरियत के मारे। लेकिन तुम्हें जब पालिया करते थे ना बचपन में, तो लगता था कि साल भर की खुशी आ गई है हमारे पास। छोटी छोटी चीजों में बड़ी खुशी मिलने का तुम क्लासिक एग्जाम्पल हो हमारी लाइफ में, हमारे बचपन में हमें चेयरअप करने के लिए। थैंक यू, तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई, इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज का जादू है कैसेट के साइड बी के चौथे गाने में।
2: मिर्ची 90s कैसेट
1: द म्यूजिक मेरे बचपन का प्यार वॉज नॉट शालीमार बट ये गाना यार। ग्रीनरी के बीच बच्चों से घिरे हुए राहुल और अंजलि का छिपते छिपाते पनपता प्यार। जब कुछ कुछ होता है मैंने पहली बार देखी थी ना, तब काजोल के टॉम बॉय लुक के बाद काजोल का ट्रांजिशन देखकर राहुल कम और मैं ज्यादा एक्साइटेड थी। और इस गाने को देख देख कर ना मैं खुद इतनी खुश थी कि ये अब राहुल और अंजलि को प्यार हो रहा है, एज इफ राहुल मेरे ताऊजी का ही बेटा हो। बट कुछ भी कहो यार, ये गाने का म्यूजिक जहाँ सुनने को मिलता है ना, आप तो डेफिनेटली समझोगे कि कुछ कुछ होता है। यही गाना कमिंग अप फॉर यू, लेकिन नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा, और यहाँ के अलावा अगर मुझे कहीं ढूंढना है तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ही बाय द नेम मिर्ची सारा। इसी के साथ ये अगला गाना आ रहा, मिलेंगे हम सेम प्लेस सेम टाइम बट नॉट द सेम डे। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: विद्या बालन, आपने 40 से ज्यादा फिल्में कर ली, 2014 में पद्मश्री कमा लिया, इतने सारे इयर्स ऑफ अचीवमेंट के बाद, डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट सॉन्ग यू फिल्म्ड फॉर?
2: ऑफ कोर्स, कस्तू मजा, परिणीता से, और शिलीगुरु में शूट हुई थी इस गाने की, और बहुत मजा आया था। इतने लोग थे, और पीरियड फिल्म है, लोग स्कूटरों पे और मोटर बाइक्स पे गाड़ियों में आ रहे थे, एंड वी कुडंट हैव दैट इन द शॉट। सो हम लोग ट्रेन पे थे, और हम लोग ट्रेन एक तरफ लेके जाते, फिर पता चलता कि जब मॉनिटर देखते तो पता चलता कि ये गाड़ियाँ आ गई है, लोग आ गए हैं गाने में, तो फिर से हम लोग रिवर्स में आ जाते, फिर शूट होता। एंड इट्स माय फर्स्ट सॉन्ग, इट्स आल्सो माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम परिणीता।
1: ओह, दैट्स अ टफ वन विद्या बालन। परिणीता का हर गाना इतना गोल्डन है, इट्स टफ टू चूज अ फेवरेट। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: మిర్చి హెల్ప్ లైన్.
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: अरे यार, मैं तो आज मेरा आईडी कार्ड ही भूल गया हूँ. कॉलेज में कैसे जाऊँ?
1: अरे गोचू, आईडी कार्ड ही भूला है ना, अंदर जाने का रास्ता तो पता ही होगा ना, तो चला जाना.
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़.

0: चुनरी और गमछे की भी जरूरत पड़ेगी, गर्मी और बढ़ने वाली है दोस्त, ऊपर से धूल मिट्टी अलग। यस बस मोरा गौरव आ गया लेकर शाम शानदार में शानदार बातें, लेकिन हम आपको डराते नहीं, मौसम ही अपने असली रंग दिखाते। शाम के 4:04।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: वैसे तो गर्मी बढ़ी गई है, लेकिन उसके साथ अब डस्ट भी बढ़ेगी। इस सैटरडे डस्ट फोरकास्ट किया गया है कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा। कुल मिलाकर गर्मी बढ़ेगी, लेकिन फुटबॉल के मैदान पर खिलाड़ियों के बीच गर्मी बढ़ने वाली है, क्योंकि आज से फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत होने जा रही है। 2026 फीफा वर्ल्ड कप जो कि मेक्सिको, कनाडा एंड यूएसए में होने वाला है। आज वहां पर पहला मुकाबला मेक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच है, और मुझे पूरी उम्मीद है पिछली बार जब ये दो टीमें 2010 में लड़ी थी आपस में तो 1-1 से मैच ड्रॉ रहा था, लेकिन इस बार मेक्सिको क्या होम ग्राउंड का एडवांटेज लेगा, इसके लिए इंतजार कीजिए। बिगेस्ट एवर वर्ल्ड कप जो आज से शुरू होने जा रहा है 48 टीमों के साथ, एक अब तक का सबसे बड़ा एडिशन, और मुझे लगता है बहुत सारी टीमों के पास मौका है धुरंधर बन के कुछ बड़ा करने का। उनमें से एक है हमारी अल्लन्ना भी बोले तो कतार, गो कतार यल्ला गोल, और इस बार कुछ बड़ा कर लौटना है इस उम्मीद में कि सब कुछ होगा। लेकिन मस्त मोलो गौरव एंटरटेनमेंट का तूफान लेकर आ गया मिर्ची पर, अगले 2 घंटे बहुत सारी मस्ती होगी और वीकेंड की वाइब सेट होगी। यही अभी भी हरारा कतीर, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rambana. Burga, burga. Na vjet bala burga. Milci, burga.
1: Hello?
2: Hello, Sunil ji.
1: Haan ji.
2: Sunil ji, पेट्रोल पंप से बोल रहा हूँ सर. कंग्रेचुलेशंस, आप लकी विनर हैं.
1: किस चीज के जी सर?
2: सर आपका 20 लीटर पेट्रोल निकला है बिल्कुल फ्री. मैं तो सोच रहा था बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि पेट्रोल के.
1: वेरी गुड यार.
2: तो सर ये आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको फिल कराना होगा, भरवाना होगा अपनी गाड़ी में.
1: ठीक है. अच्छा एक बात तो बताइए सर जी.
2: हाँ जी.
1: इसके क्या पैसे ऐसे देने पड़ेंगे कुछ?
2: नहीं सर, पैसे कोई नहीं, कोई पैसा नहीं.
1: कंडीशन वगैरह?
2: नहीं सर, कोई कंडीशन नहीं है. पुराने ग्राहक है आप, ऐसे कैसे कंडीशन रख लेंगे?
1: तो ठीक है, ग्राहक पुराने ग्राहक, कोई आदमी थोड़ा अपना समझ के कहते हैं ना.
2: बस सर बिल्कुल फ्री है, पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे. एक छोटा सा काम करना पड़ेगा.
1: क्या?
2: पुराना लाइए, नया ले जाइए.
1: क्या भैया, पुराना क्या लाऊं भाई?
2: पुराना पेट्रोल लाओ, नया ले जाओ सर, बस यही है. और वो भी आप ही का निकला.
1: क्या बात हुई, पुराना कहाँ से लाऊं?
2: सर पुराना जो
1: पुराना
2: आपने
1: हो तो जल के वो खत्म कर दिया हो तो
2: सर जो आपने पुराना यूज किया होगा वो तो लाना पड़ेगा ना आपको.
1: धुआं में कहाँ से इकट्ठा करूँ?
2: पहले तो आप बड़े दांत फाड़ रहे थे जब मैंने आपसे कहा 20 लीटर फ्री पेट्रोल है. वाह वाह जी वाह वाह, थैंक यू. अब मैं आपसे कह रहा हूँ
1: पेट्रोल मिल गया तो मुझे बड़ी अच्छी बात है.
2: अरे अरे तो ये क्या
1: पुराना कहाँ से लाऊं?
2: पुराना आपको लाना पड़ेगा. ये भी मैं पुराना भी वैसे हर वक्त रोते रहते हैं पेट्रोल के पैसे बढ़ गए बढ़ गए. हम फ्री दे रहे हैं तो ला के नहीं दे सकते पुराना. यार कमाल कर रहे हैं आप.
1: पेट्रोल फालतू का. अच्छा. पुराना लाओ, नया ले जाओ, ये ले जाओ.
3: सर जी मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ. अगर आप पुराना ले भी आए तो भी आपको 20 लीटर पेट्रोल फ्री नहीं मिलेगा. हाँ मुर्गा खाने को जरूर मिल सकता है. सर मजा आ गया आपसे बात करके. मतलब आपके गुस्से से डर गया मैं.
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची.

0: बोले गाना खत्म हो गया और आपके साथ कौन बोले मस्त मौला गौरव। फिलहाल के मस्त मौला गौरव आपके साथ है और इस बार का फीफा वर्ल्ड कप अलग डिफरेंट एंड खास है क्योंकि इस बार कुछ ऐसी चीजें नई होने जा रही हैं जो अब तक वर्ल्ड कप में नहीं हुई थी, जैसे कि एंटी टाइम वेस्टिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन लगाए गए जहां पर सब्स्टिट्यूट प्लेयर को विद इन 10 सेकेंड एग्जिट और एंट्री दोनों करनी है, यानी कि एक टीम का खिलाड़ी बाहर जा रहा होता है और टीम का दूसरा खिलाड़ी अंदर आ रहा होता है उसके लिए सिर्फ 10 सेकेंड का सब्स्टिट्यूशन रूल मिला है। इसके अलावा 5 सेकेंड रीस्टार्ट क्लॉक, यानी कि अगर 5 सेकंड से ज्यादा आप थ्रो इन में टाइम ले रहे हैं तो बॉल आपके हाथ से जाएगी, ना ही गोल किक में आप 5 सेकंड से ज्यादा ले सकते हैं, अपोनेंट के पाले में 5 सेकंड के अंदर बॉल पहुंचानी है, 1 मिनट का इंजरी बेंच मिलेगा, यानी कि इंजर्ड प्लेयर अगर ट्रीट कर रहा है पिच के अंदर तो 1 फुल मिनट और उसके बाद साइडलाइन बिफोर री एंट्री, यानी कि बाहर रह के भी 1 मिनट मैक्सिमम टाइम मिल रहा है। अगर सेकेंड येलो को रिव्यू किया गया उसके बाद आपके लिए वीएआर पर एक और फायदा हो जाएगा, यानी कि अब ड्रामा कम रियल फन ज्यादा होने वाला है। इतने नहीं, माउथ कवरिंग बैन लगेगा। हाँ जी, अगर आप मान लीजिए अपोनेंट से थोड़ी लड़ाई कर रहे हो और माउथ के ऊपर अक्सर हाथ रख के बातें करते हैं वो वाले लोगों को आपको कंडक्ट एंड डिसिप्लिन में फाइन किया जा सकता है, यानी कि रेड कार्ड मिल सकता है। प्रोटेस्ट वॉक ऑफ अगर आप करते हैं तो भी आपको टीम को फॉरफीट किया जा सकता है, मैच में रेड कार्ड दिया जा सकता है, ये ऑटोमेटिक सिचुएशन में हो जाएगा। कुल मिलाकर बहुत सारी चीजें बदलेंगी और फुटबॉल को ऑल इंटरेस्टिंग बनाएंगी। तैयार हो जाइए, 48 टीम्स, 12 डिफरेंट ग्रुप और 32 का नॉकआउट स्टेज, कौन पहुंचेगा अगले राउंड में ये सब कुछ आज रात 10 बजे से पता लगना शुरू हो जाएगा जब मेक्सिको अपने यहां करने जाएगा उस स्टेडियम में होस्ट जो तीसरी बार वर्ल्ड कप को होस्ट करा। यस, मेक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच। एंड बड़ी बात यह है कि कल की बात लगती है जब फीफा वर्ल्ड कप हमारे कतर में हुआ था, लेकिन आज सिचुएशन अलग है दोस्त। आज 3.5 साल के लगभग टाइम हो गया है और मैच आज साउथ अफ्रीका वर्सेस मेक्सिको के बीच शुरू हो जाएगा। और ये बता दें, स्टेडियो अस्तेका मेक्सिको का ये स्टेडियम तीसरी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए यूज किया जा रहा है, ये अब तक का किसी भी स्टेडियम का इतिहास है, यानी कि ओपनिंग मैचेस के लिए तीसरी बार इस्तेमाल में आना अपने आप में एक अनूठा रिकॉर्ड है। चलो जी, फिलहाल तो हम सब खुश हैं, लेकिन पठान साहब ज्यादा झूम रहे तो उनके लिए अगला गाना मिर्ची पर इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: हाँ जी, आई एम अ मिलियनेयर, ऐसा गाना ही कहता है। हम तो दोस्तों के उधार में ही फंसे पड़े। इन सब के बीच भाई बहुत सारी चीजें यूं तो हो रही है, लेकिन आज जिसकी शुरुआत होने जा रही है, जिसका सबको इंतजार है, वो है फीफा वर्ल्ड कप 2026, जहां पर यूएसए, मेक्सिको एंड कनाडा मिलकर इसे होस्ट करने जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये तीनों ही देश पहली बार ऐसा हो रहा है जब फीफा वर्ल्ड कप को 3 नेशंस एक साथ मिलकर होस्ट कर रहे हैं। इन सब के बीच होस्ट करने को तैयार है कतर के कई सारे स्कूल्स अपने ढेर सारे बच्चों को, ताकि वो आने वाले टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट ले पाए। यस, फर्स्ट टाइम इन कतर पेरेंट्स को 18 मंथ का नोटिस मिल रहा है, जिसमें प्राइवेट स्कूल अगर फी इंक्रीज कर रहा है, वो इंक्रीज करने जा रहा है, तो 18 महीने का टाइम भी दिया जाएगा। यस, 18 मंथ्स का नोटिस मिलेगा। और ये बात खुद कही है डॉक्टर रानिया मोहम्मद, डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स एंड किंडरगार्टन डिपार्टमेंट। ये एक्टिंग डायरेक्टर है प्राइवेट स्कूल लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट की। इन्होंने क्लियर किया है कि प्राइवेट एजुकेशन में पेरेंट्स को 1.5 ईयर का टाइम दिया जाएगा इफ द फी इंक्रीज इज अप्रूव्ड। बिल्कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा प्राइवेट स्कूल के फी स्ट्रक्चर में, जो कि एक तरह से मिनिस्ट्री के थ्रू आ रहा है, और मुझे लगता है इससे बहुत सारे पेरेंट्स को राहत होगी। वो भी मेहनत करेंगे कि ये जो बढ़ी हुई फीस है वो कहीं और से कैसे चुकाई जाए। उसके लिए 1.5 साल का टाइम मिलना ही अपने आप में कितनी अच्छी बात है। और मैं इसीलिए कहता हूँ, कतर सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा है, हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ रहा है, ताकि हमारी परेशानियों को दूर कर पाए। इस एफर्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन को दिल से सैल्यूट। 89.6 मिर्ची 1 हबीबी हरारा कतीर, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: एकदम सही सुना तुमने, किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
6: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।
7: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
8: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: अरिजीत सिंह की आवाज में तुम ही हो भाई, तुम ही हो, लेकिन सूरज चाचू इस वक्त तो सिर्फ तुम ही हो। एंड जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जा रहे, गर्मी का खौफ और बढ़ता जा रहा है मेरे अंदर।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: वेल, हम आपको बता दें, टेम्परेचर जैसा आज कल था वैसे ही इस पूरे वीकेंड रहने वाला है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सैटरडे को थोड़ा डस्टी वेदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने यह फोरकास्ट किया है कि ऑन जून 13th, दैट इज सैटरडे, टेम्परेचर तो हाई रहेगा लेकिन थोड़ा डस्टी विंड आ सकती है, एंड इसकी वजह से हमें और आपको बहुत ध्यान रखना है अपना। जितना हो सके लू के थपेड़ों से बचे, कोशिश करें कि दोपहर के टाइम बाहर ना निकले, और जो लोग वायलेशन कर रहे हैं और लेबर मजदूरों को बाहर खुले में 10 बजे सुबह से 3:30 बजे दोपहर के बीच काम करा रहे, याद रखिए हेफ्टी फाइन आने वाला है, काफी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हबीबी जी बफे तुराबाद इन कुल्लू खरबान, इसलिए प्लीज इस बात को समझिए, नहीं कराना है ये काम जिससे बाद में आपको हो जाए नुकसान। इसी उम्मीद में आप पानी पीते रहेंगे और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे। मस्त बोलो, गौरव आगे बढ़ता है अगले घंटे की तरफ। मिर्ची पर इट्स हॉट।
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813.

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब भी ताल फिल्म देखती हूँ ऐश्वर्या राय बच्चन के पीछे एक क्यूट लड़का दिखता है और वो कौन है शाहिद कपूर. बट शाहिद इफ आई हैड टू आस्क यू अबाउट योर फिल्म जर्नी एंड योर फर्स्ट सॉन्ग कौन सा था वो.
2: मेरा पहला गाना था इट वॉज इन इश्क इश्क ऑब्वियसली. द फर्स्ट सॉन्ग वॉज दिस सॉन्ग वी डिड इन अ कैंटीन कॉल्ड लव लव लव करो वेयर ऑल द गाइज आर ट्राइंग टू Impress the women.
1: Shahid, what a lovely dive in nostalgia. Aap sun rahe hain Mirchi. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
3: Only on Mirchi. It's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: सर, आई डोंट नो व्हाट टू डू आफ्टर कॉलेज, आप बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए।
1: अरे तो सिंपल है ना, फटाफट कर जा, मम्मी इंतजार कर रही होगी।

0: पिक्चर नहीं बन जा रही, गाने नहीं बन पा रहे, वही पुराने वालों को घसीटा जा रहा। आनंद राज आनंद के आवाज में एक बार फिर से ये गाना सुनाया किसने, मतलब आप ब्यूटी देखिए म्यूजिक की, कि म्यूजिक वही बनाया जा रहा है, पिक्चर को भले ही दोबारा परोसा जा रहा है नई स्टोरी के साथ। शाम के 5:05 हुए जनाब।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: अब वो तो वक्त बताएगा फिल्म कितनी हिट होगी, लेकिन सबके बीच हिट होगा क्या 10th विमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो कल से शुरू होने जा रहा है। एक तरफ फीफा वर्ल्ड कप आज से शुरू हो रहा है और कल से दुनिया का दूसरा सबसे पॉपुलर गेम क्रिकेट का विमेन्स T20 वर्ल्ड कप का एडिशन शुरू होने जा रहा है इंग्लैंड एंड वेल्स में, एंड पहला ही मुकाबला इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच होना है। फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। बड़ी बात यह है कि इस बार टूर्नामेंट में जबरदस्त एक ग्रुप ऑफ डेथ है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड जैसी टीम है। वहीं दूसरे ग्रुप में इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, श्रीलंका एंड वेस्ट इंडीज है। वेल, ग्रुप ऑफ डेथ, इंडिया का पहला मुकाबला ही पाकिस्तान की टीम से होना है। ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स, क्योंकि हम ये मानते हैं क्रिकेट में एक असली मजा तो इसी मैच का होता है। जैसे इंडिया आज तक कभी भी ये ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, सबसे ज्यादा बार इस ट्रॉफी पर कब्जा किया है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन इस बार न्यूजीलैंड की टीम है। और मुझे लगता है टीम इंडिया ने जिस तरह से 50 ओवर का वनडे वर्ल्ड कप जीता है, इंडिया के पास एडवांटेज है। जेम रॉड्रिग्स एंड स्मृति मंधाना जैसे खिलाड़ी हैं जो टीम को इस बार जिता कर लाने में सक्षम है। अगर ऐसा होता है तो इंडियन वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप के साथ साथ मुझे लगता है ये T20 वर्ल्ड कप भी घर लेकर आएंगी। ऑल द बेस्ट टू टीम, मुझे उम्मीद है जिस तरह से हमारी टीम जा रही है कुछ कमाल कर ही लौटेगी। सो टीम इंडिया ऑल द बेस्ट, आप लोग कमाल करना और एकदम जबरदस्त खेल के लौटना। हम आपको जब एयरपोर्ट पर लेने आए तो आपके हाथों में जमजमाती ट्रॉफी हो, यही सपना हर हिंदुस्तानी का होगा। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na virtuala burga.
1: Milci, burga.
2: हेलो
1: हेलो नवनीत
2: या
1: नवनीत, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ।
2: हाय नवेद,
1: क्या हाल चाल है?
2: बढ़िया है।
1: आपने मैसेज किया था अपने फादर का मुर्गा बनवाने के लिए।
2: हाँ, बन गया क्या
1: यार? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुमने किस आदमी का नंबर दिया यार मुझे?
2: हाँ?
1: सोच समझ के नंबर देते हो नहीं देते हो? मैंने उनको फोन किया, वो मुझ पे भड़क रहे हैं यार शुरू में ही।
2: या मैंने तो अपने पापा का ही नंबर दिया।
1: पापा का नंबर, नाम क्या है यार पापा का?
2: मिस्टर दिलीप।
1: उनसे ही मेरी बात हुई है यार। मैंने माना, मजाक अपनी जगह है, मुर्गा बनाता हूँ, मैं भी हंसता हूँ, तुम्हें भी हंसाता हूँ, लेकिन यार ये थोड़ी उसका नाजायज फायदा उठा लो तुम।
2: मैं क्या कुछ गलत
1: बोल दिया यार? मैं मतलब यहाँ पे इसलिए आता हूँ कि मैं गालियाँ सुनूँ यार?
2: अब ऐसी बात क्या
1: ऐसी बात क्या हो गई? अपने अपने

0: से पूछो यार जाके। नहीं, अपने फादर से क्यों नहीं पूछते तुम जाके?
1: अब मैं क्या
0: पूछूं यार, तुम्हें पहले कहना चाहिए था मुझसे कि उन्हें गुस्सा आता है, वो ज्यादा भड़क जाते हैं यार।
1: अब गुस्सा तो सभी को आता है, ठीक से बात कर ले।
0: तुम मुझे ये बताओगे कि मैं कैसे बात कर लेता? यार नवनीत कम ऑन यार, ऐसे नहीं होता है। मैंने माना कि चलो एक शो है, मुर्गा बनाते हैं उसमें, ये थोड़ी यार क्या तुम उठा के किसी का भी नंबर दे दो, किसी का भी मुर्गा बनवा लो।
1: अब कुछ ज्यादा पापा ने बोल दिया।
0: अरे तो
1: तरफ से मैं माफी
0: मांगने से क्या होता है यार? ऐसी मैं माफी मांग रहा था उनसे, मैंने माफी मांगी 50, वो नहीं मान रहे। तुमने यार पता नहीं उठा के क्या समझ रखा है मुझे।
1: अब मैंने क्या, आपने बोला कि मुर्गा बनाना है, SMS कर दो, मैंने कर दिया।
0: तुम मुझे क्या पता था यार, तुम अपने ऐसे फादर का नंबर दे दोगे यार?
1: ऐसे फादर क्या, मेरे तो एक ही फादर है, मैं ढूंढ के लाऊंगा।
0: अरे तो यार अब तुम उल्टे मुझसे बात कर रहे हो। एक तो पहले बाप की सुनिए, अब मैं बेटे की सुन लो। यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या?
1: मेरा खराब नहीं हो गया, मुझे लग रहा है आप ही का थोड़ा हो गया है।
0: इस वक्त तुम्हारा ही मुर्गा बन रहा है, मेरी तुम्हारी फादर से अभी तक बात भी नहीं। ऐसे अच्छे काम होते रहते हैं यहाँ पर। वैसे तुम्हारे फादर के वाकई में गुस्से वाले हैं?
1: नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, कभी कभी तो गुस्सा कर ही देते हैं।
0: चलो एक बार प्यार से मेरे साथ उनकी तरफ से बोल दो।
1: कुकड़ुकू
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: एक फीलिंग्स हमारे भी आती है वीकेंड में, वो होती है ग्रोसरी शॉपिंग वाली फीलिंग, जिसमें हम चाहते हैं सब खरीद लें। यस और मस्त मौला गौरव यही कहेगा कि हम में से ज्यादातर लोग कतर में ना ये एक फीलिंग होती होती है कि वीकेंड पे ना ग्रोसरी शॉपिंग कर लेंगे, हफ्ते के किसी और दिन नहीं जाने की जरूरत है। बिल्कुल मिलाकर अगर आप भी इस वीकेंड प्लान कर रहे हो तो मैं एक जगह बता सकता हूँ जहां पर जाकर आपको अच्छी खासी सेविंग मिलने वाली है। यस बात कर रहा हूं मैं पैलेस हाइपर मार्केट के अलबकरा ब्रांच की, जहां पर चल रहा है सेकेंड एनिवर्सरी का जबरदस्त अमेजिंग ऑफर। यस यहाँ पर प्राइसेस में तो छूट है एंड भारी छूट कुछ और चीजों पर मिली है, जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदना चाहते हैं, होम एसेंशियल्स खरीदना चाहते हैं, यहाँ पर आपको कुछ इनक्रेडिबल प्राइसेस डील मिलने वाली है। फ्रेश ग्रोसरीज पर भी डील्स हैं एंड ये डील इतनी बड़ी है कि आप सामान खरीदते खरीदते थक जाएंगे, लेकिन डील्स है कि खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। एक बार जरूर ट्राई कीजिए इफ यू लिव अराउंड वखरा। याद रखिये पैलेस हाइपर मार्केट सेकेंड एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर अलवखरा ब्रांच की, और यहाँ पर वो आपके लिए कुछ ऐसे प्राइजेस लेकर आए हैं जो इस समय में आपकी अच्छी खासी बचत करा सकते हैं, और अगर बचत हो जाए तो एक छोटी पार्टी हमारे साथ। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
4: अभी कॉल करें 3100-0813।
6: अर्ज किया है
7: इरशाद,

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
3: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
4: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

नकश अजीज अंतरा मित्रा की आवाज में गाना आपके कानों तक कौन पहुंचा रहा है? लेकिन आप है कि हमें थोड़ा सा भी रियाल नहीं पहुंचा रहे। मतलब यार, जब ना 10 तारीख आ जाती है तो मेरे बैग से पैसे यानी कि रियाल ऐसे छूमंतर होते हैं जैसे जादूगर कभी कभी गायब नहीं कर देते लोगों, वैसा। मतलब हम चाह के भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि वॉलेट में कुछ निकल जाए, लेकिन अगर आपके पास है तो आप तुरंत अपने घर वालों के लिए निकाल दीजिए। अरे अच्छे रेट जो मिल रहे हैं। वेल, बात करें तो इस वक्त इंडियन रुपीस आपको मिलेंगे एक कतरी रियाल के बदले 26.22 26 रुपए 22 पैसे भारतीय मुद्रा में। आप घर भेज के लखपति बनिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लंकन रुपीस अगेंस्ट 1 कतरी रियाल 91.41 91.41 वहीं अगर इसके बाद तपाईको नेपाल रुपीस का रेट बात करेगा दाजु एक कतरी रियाल के बदले 41.90 का भल छ रेट है भाई जी 41.90 का भल छ रेट है दाई अगर घर भेजना है तो ठीक चाइन छो। अगर इसके बाद हम बात करें तो पाकिस्तान रुपीस जनाब वाहिद रियाल के बदले 76.73 76.73 पाकिस्तान रुपीस बांधू बांग्लादेशी टका दादा एक्टा कतरी रियाल के बदले 33.76 तो 33.76 बांग्लादेशी टका का रेट। ये था आईपे का एक्सचेंज रेट। मस मौलक और बस इतना ही कहेगा, अगर अभी तक ये ऐप डाउनलोड नहीं किया कर लो भैया, एक ही छत के नीचे बहुत सारे फायदे के सौदे हैं। मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, bold eye. Only on Mirchi. It's hot.
1: श्रेयस तलपड़े आपकी सबसे पहली हिंदी फिल्म इकबाल थी, लेकिन क्या आपको याद है सबसे पहला गाना आपने कौन सा शूट किया था?
2: एक्चुअली टेलीविजन सीरियल का हमने एक टाइटल सॉन्ग शूट किया था, तो आई थिंक दैट प्रॉब्ली वाज द वन व्हिच वाज माय फर्स्ट सॉन्ग एज सच. मराठी गाना था वो. टाइटल था सीरियल का बेधुंद मना चल लहरी. इट वाज लाइक बेधुंद मना ची लहर लहरी चा होती लाटा लाटा होता कहर किनारा शोधती हजार वाटा.
1: श्रेयस, यू आर नॉट ओनली अ गुड एक्टर, यू आर अ फाइन सिंगर. मुझे लगता है आपको ये वाला ऑप्शन अब एक्सप्लोर करना शुरू कर लेना चाहिए. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

क्या छठी बार ही सही फुटबॉल वर्ल्ड कप में छक्का लगा देंगे रोनाल्डो? यस, बता दें इस बार तीन प्लेयर्स ऐसे हैं जो इतिहास रचने जा रहे हैं और फीफा वर्ल्ड कप का 6th एडिशन खेलने जा रहे हैं। यस, फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का 6th एडिशन खेलने जा रहे हैं तीन प्लेयर्स, पोर्चुगल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेक्सिको के गोलकीपर गुलेर्मो ओकुआ एंड इसके अलावा अर्जेंटीना बोले तो लायनल मेसी। लेकिन लायनल मेसी 2022 फीफा वर्ल्ड कप जीत कर अपने आप को गोट साबित कर चुके हैं। अब यह मौका क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिलेगा या फिर मेक्सिको इस बार होम एडवांटेज लेकर गुलेर्मो ओकुआ अपनी टीम को जिताएंगे, इसके लिए तो इंतजार है अब अगले कुछ दिनों का। अब तक का सबसे बड़ा एडिशन होगा फुटबॉल वर्ल्ड कप का, इससे पहले इसका कोई वर्ल्ड कप नहीं था जो इतने दिनों तक चला। यस, 11 जून से लेकर 19 जुलाई, ऑलमोस्ट 39 डेज। इसके अलावा होस्ट सिटीज भी इस बार तीन है एंड नंबर ऑफ मैचेस इज 104। लास्ट सबसे बड़ा वर्ल्ड कप 98 में हुआ था फ्रांस में, तब 64 गेम्स थे, इस बार 104 मैचेस। यानी कि फुटबॉल फैंस के लिए आज रात से ट्रीट शुरू हो जाएगी। ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम्स, बट मैं जिस टीम के साथ, उसका नाम है अर्जेंटीना, ब्राजील एंड उसके अलावा फ्रांस के साथ साथ मैं इंग्लैंड को सपोर्ट करूंगा। लेट्स सी इनमें से किसकी नैया पार होती है। बट रोनाल्डो साहब, आपको ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूं यार, बीइंग अ गोट, आपको भी एक ट्रॉफी बनती है फीफा वर्ल्ड कप की। चलिए जी, इस उम्मीद में कि जो हम कह रहे हैं वो 19 जुलाई को सक्सेसफुल होगा, मस्मोलोग और लेगा अलविदा, लौटेगा आप सैटरडे की शाम शानदार में ढेर सारी बातें लेकर मिर्ची पर। इट्स हॉट हबीबी, मस्सलामा।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बज गए शाम के छह एंड यू एंजॉयिंग क्लब मिर्ची.
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड वेट फॉर द नो स्मोकिंग साइन. वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड.
4: क्लब मिर्ची विद ओयोंतिका एंड डीजे रिचर्ड.

0: eyewear partner Alfahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Ghoot Insurance. Visit Alfahad Optics all over Qatar. Call 555-6189.
1: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट. चाइनीज, मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डिश, तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसिस में. स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त.
0: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल. शॉपिंग, डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन. अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल. अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन.
1: Hygiene partner, hygiene. From clean skin to healthy life. Experience total protection with hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
2: Sugar-free partner, Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
3: Jewelry partner Sky Jewelry. हर पल को बनाए खास स्काई ज्वेलरी के साथ. एलिगेंट डिजाइन्स, डैजलिंग कलेक्शंस और हर बजट के लिए परफेक्ट ज्वेलरी. शॉप नाउ एंड एंटर द मेगा ड्रॉ ऑन जून 23rd फॉर अ चांस टू विन अ ब्रांड न्यू लेक्सस कार. स्काई ज्वेलरी, डिजाइन फॉर जनरेशंस.
4: रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलाडना मिल्क लबान योगर्ट. एक्सपीरियंस द फ्रेश क्रीमी टेस्ट दैट कतार लव्स. रिफ्रेशिंग एवरी मोमेंट विद एवरी सिप एंड स्पून.
5: Fragrance partner Faridi Perfumes Gallery. Make every moment unforgettable with premium Arabic and French fragrances crafted for every style. Visit our Al Saad branch, Faridi Perfumes Gallery. Luxury you can wear. Visual media partner Rehab Media.
6: Ladies and gentlemen.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
4: भाई, इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: अर्ज किया है
7: इरशाद,

0: Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: Ja Simran, ja jeere apni zindagi. Ja beta, ja.
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
3: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट
5: मिर्ची।
6: इसका बाना उसका बाना सबका बाना। मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा।
7: हेलो
8: से बोल रहे हैं?
7: हाँ जी।
8: मुझे कुछ ऑर्डर करना था, आप लिख लेंगे प्लीज?
7: या
8: और रात के खाने के लिए लिख लीजिए प्लीज। ढाई किलो अरहर दाल, 3 किलो चना दाल, 3.5 किलो चना कबूली, 4 किलो चना डॉलर प्रीमियम, 1 बेसन। हाँ
7: एक्चुअली में 2.5 किलो वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता, 2-2 किलो में, 1-1 किलो में पैकिंग होती है, तो 2 kg।
8: अब आपको ये मैं क्या, वो 2.5 किलो ही खाते में मैं क्या करूँ?
7: Oh my God.
8: मेरे हस्बैंड हैं, डाइट उनकी है, आपको क्या प्रॉब्लम है?
7: नहीं मैम प्रॉब्लम।
8: 4 किलो चना दाल, 4 किलो चना कबूली,
7: चना दाल, चना कबूली। एरोप्लेन भेजूं?
8: एरोप्लेन भेजिए, हमें जाना ना हनीमून पे।
7: सॉरी मैम, मैं ये बोल रहा हूँ 5 kg एरोप्लेन राइट मैम, सॉरी।
8: एक सेकेंड, कभी फोन आ रहा है। स्वीट हार्ट आई लव यू, ऑर्डर दे रही हूँ। तुम आओ तो सही ना। No, I haven't.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हेलो सुनील जी।
2: हाँ जी
3: सुनील जी, पेट्रोल पंप से बोल रहा हूँ। सर कंग्रेचुलेशन, आप लकी विनर हैं।
2: किस चीज के जी सर?
3: सर आपका 20 लीटर पेट्रोल निकला है बिल्कुल फ्री। मैं तो सोच रहा था बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि पेट्रोल के
2: यार, बहुत बढ़िया, बड़ी।
3: तो सर ये आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको फिल कराना होगा, भरवाना होगा अपनी गाड़ी में।
2: ठीक है, अच्छा एक बात तो बताइए सर जी।
3: हाँ जी,
2: इसके क्या पैसे ऐसे देने पड़ेंगे कुछ?
3: नहीं सर, पैसे कोई नहीं, कोई पैसा नहीं।
2: कंडीशन वगैरह?
3: नहीं सर, कोई कंडीशन नहीं है। पुराने ग्राहक है आप, ऐसे कैसे कंडीशन रख लेंगे?
2: तो ठीक है, ग्राहक पुराने ग्राहक को आदमी थोड़ा अपने समझ के कहते हैं ना, अपने कोई ज्यादा।
3: बस सर बिल्कुल फ्री है, पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। एक छोटा सा काम करना पड़ेगा।
2: क्या?
3: पुराना लाइए, नया ले जाइए।
2: क्या भैया, पुराना क्या लाऊं भाई?
3: पुराना पेट्रोल लाओ, नया ले जाओ सर, बस यही है। और वो भी आप ही का निकला है।
2: क्या बात हुई, पुराना कहाँ से लाऊं
3: सर? पुराना जो आपने
2: पुराना हो तो जल के वो खत्म कर दिया हो
3: तो सर, जो आपने पुराना यूज किया होगा वो तो लाना पड़ेगा ना आपको।
2: धुआं में कहाँ से इकट्ठा करूं?
3: पहले तो आप बड़े दांत फाड़ रहे थे जब मैंने आपसे कहा 20 लीटर फ्री पेट्रोल है, वाह वाह जी वाह वाह थैंक यू। अब मैं आपसे कह रहा हूँ
2: पेट्रोल मिल गया तो मुझे बड़ी अच्छी बात है।
3: अरे
2: क्या हो रहा है?
3: अरे तो ये क्या तो
2: पुराना कहाँ से लाऊं?
3: पुराना आपको लाना पड़ेगा, ये भी मैं पुराना भी मैं। वैसे हर वक्त रोते रहते हैं पेट्रोल के पैसे बढ़ गए, हम फ्री दे रहे हैं तो ला के नहीं दे सकते पुराना। यार कमाल कर रहे हैं आप,
2: पेट्रोल फालतू का।
4: अरे सर जी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, अगर आप पुराना ले भी आए तो भी आपको 20 लीटर पेट्रोल फ्री नहीं मिलेगा। हाँ मुर्गा खाने को जरूर मिल सकता है।
3: सर मजा आ गया आपसे बात करके, मतलब आपके गुस्से से डर गया मैं।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
4: भाई, इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
7: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
8: बहुत कुछ होगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM Mirchi 1.
11: It's hot.
12: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go
13: on a ride.
14: Club Mirchi.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: विद्या बालन, आपने 40 से ज्यादा फिल्में कर ली, 2014 में पद्मश्री कमा लिया, इतने सारे इयर्स ऑफ अचीवमेंट के बाद, डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट सॉन्ग यू फिल्म्ड फॉर?
4: ऑफ कोर्स, कस्तो मजा, परिणीता से, और शिलीगुड़ी में शूट हुई थी इस गाने की, और बहुत मजा आया था। इतने लोग थे, और पीरियड फिल्म है, लोग स्कूटरों पे और मोटर बाइक्स पे गाड़ियों में आ रहे थे, एंड वी कुडंट हैव दैट इन द शॉट। सो हम लोग ट्रेन पे थे, और हम लोग ट्रेन एक तरफ लेके जाते, फिर पता चलता कि जब मॉनिटर देखते तो पता चलता कि ये गाड़ियाँ आ गई है, लोग आ गए हैं गाने में, तो फिर से हम लोग रिवर्स में आ जाते, फिर शूट होता। एंड इट्स माय फर्स्ट सॉन्ग, इट्स आल्सो माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम परिणीता।
3: ओह, दैट्स अ टफ वन विद्या बालन। परिणीता का हर गाना इतना गोल्डन है, इट्स टफ टू चूज अ फेवरेट। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
4: भाई, इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन,
7: Club Mirchi.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
2: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6
4: FM मिर्ची वन इट्स हॉट
5: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो
6: ऑन अ

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: जब भी ताल फिल्म देखती हूँ ऐश्वर्या राय बच्चन के पीछे एक क्यूट लड़का दिखता है और वो कौन है शाहिद कपूर. बट शाहिद इफ आई हैड टू आस्क यू अबाउट योर फिल्म जर्नी एंड योर फर्स्ट सॉन्ग कौन सा था वो.
4: मेरा पहला गाना था इट वॉज इन इश्क इश्क ऑब्वियसली. द फर्स्ट सॉन्ग वॉज दिस सॉन्ग वी डिड इन अ कैंटीन कॉल्ड लव लव लव करो वेयर ऑल द गाइज आर ट्राइंग टू इम्प्रेस द वुमेन.
3: शाहिद, व्हाट अ लवली डाइव इन नॉस्टैल्जिया. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल डाल.
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go.
6: On a ride.
7: Club Mirchi.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हेलो नवनीत
2: या
3: नवनीत, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ।
2: हाय नवेद,
3: क्या हाल चाल है?
2: बढ़िया है।
3: आपने मैसेज किया था अपने फादर का मुर्गा बनवाने के लिए।
2: हाँ हाँ हाँ, बन गया क्या?
3: यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने किस आदमी का नंबर दिया यार मुझे?
2: हाँ?
3: सोच समझ के नंबर देते हो नहीं देते हो? मैंने उनको फोन किया, वो मुझ पे भड़क रहे हैं यार शुरू में ही।
2: यार मैंने तो अपने पापा का ही नंबर दिया।
3: पापा का नंबर, नाम क्या है यार पापा का?
2: मिस्टर दिलीप।
3: उनसे मेरी बात हुई है यार। मैंने माना, मजाक अपनी जगह है, मुर्गा बनाता हूँ, मैं भी हंसता हूँ, तुम्हें भी हंसाता हूँ, लेकिन यार ये थोड़ी उसका नाजायज फायदा उठा लो तुम।
2: मैं क्या कुछ गलत
3: बोल दिया यार? मैं मतलब यहाँ पे इसलिए आता हूँ कि मैं गालियाँ सुनूँ यार?
2: अब ऐसी बात क्या
3: ऐसी हो गई? ऐसी बात क्या हो गई? अपने फादर से पूछो यार जाके। नहीं, अपने फादर से क्यों नहीं पूछते तुम जाके?
2: अब मैं क्या
3: पूछूं यार, तुम्हें पहले कहना चाहिए था मुझसे कि उन्हें गुस्सा आता है, वो ज्यादा भड़क जाते हैं यार।
2: अब गुस्सा तो सभी को आता है, ठीक से बात कर ले।
3: तुम मुझे बताओगे कि मैं कैसे बात कर लेता यार? नवनीत कमॉन यार, ऐसे नहीं होता है। मैंने माना कि चलो एक शो है, मुर्गा बनाते हैं उसमें, ये थोड़ी यार क्या तुम उठा के किसी का भी नंबर दे दो, किसी का भी मुर्गा बनवा लो।
2: अब कुछ कुछ ज्यादा पापा ने बोल दिया तो
3: अरे तो
2: तरफ से मैं माफी मांग।
3: माफी मांगने से क्या होता है यार? ऐसी मैं माफिया मांग रहा था उनसे, मैंने माफी मांगी है 50, वो नहीं मान रहे। तुमने यार पता नहीं उठा के क्या समझ रखा है मुझे।
2: अब मैंने क्या, आपने बोला कि मुर्गा बनाना है, SMS कर दो, मैंने कर दिया।
3: तो मुझे क्या पता था यार तुम अपने ऐसे फादर का नंबर दे दोगे यार?
2: ऐसे फादर क्या, मेरे तो एक ही फादर है, मैं ढूंढ के लाऊंगा।
3: अरे तो यार अब तुम उल्टे मुझसे बात कर रहे हो। एक तो पहले बाप की सुनिए, अब मैं बेटे की सुन लूं। यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या?
2: मेरा खराब नहीं हो गया, मुझे लग रहा है आप ही का थोड़ा हो गया।
3: इस वक्त तुम्हारा ही मुर्गा बन रहा है, मेरी तुम्हारी फादर से अभी तक बात भी नहीं। ऐसी अच्छे काम होते रहते हैं यहाँ पर। वैसे तुम्हारे फादर के वाकई में गुस्से वाले हैं?
2: नहीं, ऐसा तो नहीं है, कभी कभी तो गुस्सा कर ही देते।
3: चलो एक बार प्यार से मेरे साथ उनकी तरफ से बोल दो
2: कुकड़ू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories. Stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
4: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
7: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सब।

0: a rooftop, in a car, at a house party, or dancing with a boo at home, Club Mirchi is bringing the weekend to you. DJ Richard, you gotta give him a shout out, DJ Richard Official on socials. Let's go!
1: इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुख देने वाली चीज कौन और इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुख देने वाली चीज कौन और अब जब एक औरत से इतना दुख खा लिया दूसरी औरत से थोड़ा

0: Club Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: बादशाह, आपने इतने गाने बनाए, इतने गाने कंपोज किए, सबसे पहला रैप आपने किस पे लिखा था?
4: जो मैथ्स के टीचर है उन पे रैप लिखा था। टीचर अच्छे नहीं थे, क्योंकि एक जैसे टीचर होते हैं वैसे वो थे नहीं, तो मैंने उन पे रैप लिखा जो काफी मशहूर हो गया। दैट वाज माय फर्स्ट। दिक्कत तब हुई जब वो रैप उन्होंने ही पढ़ लिया, उसके बाद मेरा एजुकेशन पे से विश्वास ही उठ गया।
3: 2+2=4, बादशाह गिव अस मोर, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड पोर्टल,
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go. On a ride.
0: Club Mirchi with Oyon Deka and T.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Murga, murga. Nabiyat wala murga. Mirchi, murga.
3: Hello?
4: Hello, Sunil ji.
3: Haan ji.
4: Sunil ji, पेट्रोल पंप से बोल रहा हूँ सर. कंग्रेचुलेशंस, आप लकी विनर हैं.
3: किस चीज के जी सर?
4: सर आपका 20 लीटर पेट्रोल निकला है बिल्कुल फ्री. मैं तो सोच रहा था बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि पेट्रोल के
3: यार, बहुत बढ़िया.
4: तो सर ये आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको फिल कराना होगा, भरवाना होगा अपनी गाड़ी में.
3: ठीक है. अच्छा एक बात तो बताइए सर जी.
4: हाँ जी.
3: इसके क्या पैसे ऐसे देने पड़ेंगे कुछ?
4: नहीं सर, पैसे कोई नहीं, कोई पैसा नहीं.
3: कंडीशन वगैरह?
4: नहीं सर, कोई कंडीशन नहीं है. पुराने ग्राहक है आप, ऐसे कैसे कंडीशन रख लेंगे?
3: वो तो ठीक है, ग्राहक पुराने ग्राहक को आदमी थोड़ा अपना समझ के कहते हैं ना अपने को ज्यादा.
4: बस सर बिल्कुल फ्री है, पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे. एक छोटा सा काम करना पड़ेगा.
3: क्या?
4: पुराना लाइए, नया ले जाइए.
3: क्या भैया, पुराना क्या लाऊं भाई?
4: पुराना पेट्रोल लाओ, नया ले जाओ सर, बस यही है. और वो भी आप ही का निकला.
3: क्या बात हुई, पुराना कहाँ से लाऊं
4: सर? पुराना जो आपने
3: पुराना हो तो जल के वो खत्म कर दिया हो
4: तो सर जो आपने पुराना यूज किया होगा वो तो लाना पड़ेगा ना आपको.
3: धुआं में कहाँ से इकट्ठा करूं?
4: पहले तो आप बड़े दांत फाड़ रहे थे जब मैंने आपसे कहा 20 लीटर फ्री पेट्रोल है. वाह वाह जी, वाह वाह, थैंक यू. अब मैं आपसे कह रहा हूँ
3: पेट्रोल मिल गया तो मुझे बड़ी अच्छी बात है.
4: अरे अरे तो ये क्या
3: पुराना कहाँ से लाऊं?
4: पुराना आपको लाना पड़ेगा. ये भी मैं पुराना भी वैसे हर वक्त रोते रहते हैं पेट्रोल के पैसे बढ़ गए. हम फ्री दे रहे हैं तो ला के नहीं दे सकते पुराना. यार कमाल कर रहे हैं आप.
3: अच्छा. पुराना लाओ, नया ले जाओ, ये ले जाओ.
4: अरे मेरी बात सर जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. अगर आप पुराना ले भी आए तो भी आपको 20 लीटर पेट्रोल फ्री नहीं मिलेगा. हाँ मुर्गा खाने को जरूर मिल सकता. सर मजा आ गया आपसे बात करके. मतलब आपके गुस्से से डर गया मैं.
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. 89.6 89.6 मिर्ची.

0: Hot Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
4: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: दोस्ती कैसे सुले मैडम? नो सॉरी नो थैंक यू।
7: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
8: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
9: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: श्रेयस तलपड़े आपकी सबसे पहली हिंदी फिल्म इकबाल थी, लेकिन क्या आपको याद है सबसे पहला गाना आपने कौन सा शूट किया था?
4: एक्चुअली टेलीविजन सीरियल का हमने एक टाइटल सॉन्ग शूट किया था, तो आई थिंक दैट प्रोबब्ली वाज द वन व्हिच वाज माय फर्स्ट सॉन्ग एज सच. मराठी गाना था वो. टाइटल था सीरियल का बेधुंद मनाची लहरी. इट वाज लाइक बेधुंद मनाची लहर लहरीचा होती लाटा लाटा होता कहर किनारा शोधती हजार वाटा.
3: श्रेयस, यू आर नॉट ओनली अ गुड एक्टर, यू आर अ फाइन सिंगर. मुझे लगता है आपको ये वाला ऑप्शन अब एक्सप्लोर करना शुरू कर लेना चाहिए. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल्डाल.
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल.
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are going to go.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Murga, murga. Nabit wala murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: से बोल रहे हैं?
2: हाँ जी।
3: मुझे कुछ ऑर्डर करना था, आप लिख लेंगे प्लीज?
2: या?
3: और रात के खाने के लिए लिख लीजिए प्लीज।
2: हाँ, बोलिए।
3: 2.5 किलो अरहर दाल, 3 किलो चना दाल, 3.5 किलो चना कबूली, 4 किलो चना डॉलर प्रीमियम, 1 बेसन। हाँ,
2: एक्चुअली में 2.5 किलो वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता, 2-2 किलो में, 1-1 किलो में पैकिंग होती है, तो 2 kg।
3: अब आपको ये मैं क्या, वो 2.5 किलो ही खाते हैं, मैं क्या करूँ?
2: Oh my God.
3: मेरे हस्बैंड हैं, डाइट उनकी है, आपको क्या प्रॉब्लम है?
2: नहीं मैम, प्रॉब्लम
3: 4 किलो चना दाल, 4 किलो चना कबूली,
2: चना दाल, चना कबूली, एरोप्लेन भेजूं?
3: एरोप्लेन भेजिए, हमें जाना ना हनीमून पे।
2: सॉरी मैम, मैं ये बोल रहा हूँ 5 kg एरोप्लेन राइट मैम, सॉरी।
3: एक सेकेंड, कभी फोन आ रहा है। स्वीट हार्ट आई लव यू, ऑर्डर दे रही हूँ। तुम आओ तो सही ना। No, I will be waiting for you, my sweetheart, my Janu.
2: Hello.
3: One second, मेरे हस्बैंड से बात चल रही है, one second. कब आओगे रात में? अच्छा सुनो, मेरे लिए रात में वो लेके आना ना, वही वही कुची पुची कुची पुची. ओके स्वीटहार्ट बाय। हाँ लिखिए, 3 प्लेट गोलगप्पे।
2: गोलगप्पे नहीं होते,
3: चकोर दे दीजिए। गोलगप्पे नहीं है, चकोर वाले दे दीजिए।
2: है नहीं मैम हमारे यहाँ,
3: लंबे वाले
2: नहीं है वो।
3: अच्छा लास्ट फाइनली, मैं और मेरे हस्बैंड जो बहुत शौक से खाते हैं,
2: क्या खाते हैं
3: मैम? मुर्गा
2: मैम, वो भी नहीं है।
3: आपको ये नहीं मालूम दिल्ली में सबसे अच्छा मुर्गा कहाँ बनता है?
2: मैम ये हमें नहीं
3: पता। हमें मालूम है, मैं बताऊँ आपको?
2: हाँ जी मैम बताइए।
4: रेडियो मिर्ची, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं छोटा सा मजाक कर रहा था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया भाई साहब हमने।
2: आपकी आवाज में काफी
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
4: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
7: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
8: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Hot Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो तीन बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
4: भाई, इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
7: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
10: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।
0: क्लब मिर्ची

0: Club Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: विद्या बालन, आपने 40 से ज्यादा फिल्में कर ली, 2014 में पद्मश्री कमा लिया, इतने सारे इयर्स ऑफ अचीवमेंट के बाद, डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट सॉन्ग यू फिल्म्ड फॉर?
4: ऑफ कोर्स, कस्तू मजा, परिणीता से, और शिलीगुड़ में शूट हुई थी इस गाने की, और बहुत मजा आया था। इतने लोग थे और पीरियड फिल्म है, लोग स्कूटरों पे और मोटर बाइक्स पे गाड़ियों में आ रहे थे, एंड वी कुडंट हैव दैट इन द शॉट। सो हम लोग ट्रेन पे थे और हम लोग ट्रेन एक तरफ लेके जाते, फिर पता चलता कि जब मॉनिटर देखते तो पता चलता कि ये गाड़ियाँ आ गई है, लोग आ गए हैं गाने में, तो फिर से हम लोग रिवर्स में आ जाते, फिर शूट होता। एंड इट्स माय फर्स्ट सॉन्ग, इट्स आल्सो माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम परिणीता।
3: ओह, दैट्स अ टफ वन विद्या बालन। परिणीता का हर गाना इतना गोल्डन है, इट्स टफ टू चूज अ फेवरेट। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन,
0: with Oyon Dika and

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. Navirbala, burka. Mirchi, burka.
2: हेलो
3: हेलो नवनीत
2: या
3: नवनीत, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ।
2: हाय नवेद,
3: क्या हाल चाल है?
2: बढ़िया है।
3: आपने मैसेज किया था अपने फादर का मुर्गा बनवाने के लिए।
2: हाँ, बन गया क्या
3: यार? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुमने किस आदमी का नंबर दिया यार मुझे?
2: हाँ?
3: सोच समझ के नंबर देते हो नहीं देते हो? मैंने उनको फोन किया, वो मुझ पे भड़क रहे हैं यार शुरू में ही।
2: या मैंने तो अपने पापा का ही नंबर दिया।
3: पापा का नंबर, नाम क्या है यार पापा का?
2: मिस्टर दिलीप।
3: उनसे ही मेरी बात हुई है यार। मैंने माना, मजाक अपनी जगह है, मुर्गा बनाता हूँ, मैं भी हंसता हूँ, तुम्हें भी हंसाता हूँ, लेकिन यार ये थोड़ी उसका नाजायज फायदा उठा लो तुम।
2: मैं क्या कुछ गलत
3: बोल दिया यार? मैं मतलब यहाँ पे इसलिए आता हूँ कि मैं गालियाँ सुनूँ यार?
2: अब ऐसी बात क्या,
3: ऐसी बात क्या हो गई? अपने फादर से पूछो यार जाके। नहीं, अपने फादर से क्यों नहीं पूछते तुम जाके?
2: अब मैं क्या
3: पूछूं यार? तुम्हें पहले कहना चाहिए था मुझसे कि उन्हें गुस्सा आता है, वो ज्यादा भड़क जाते हैं यार।
2: अब गुस्सा तो सभी को आता है, ठीक से बात कर ले।
3: तुम मुझे बताओगे कि मैं कैसे बात कर लेता यार? नवनीत कमॉन यार, ऐसे नहीं होता है। मैंने माना कि चलो एक शो है, मुर्गा बनाते हैं उसमें, ये थोड़ी यार तुम उठा के किसी का भी नंबर दे दो, किसी का भी मुर्गा बनवा लो।
2: अब कुछ ज्यादा पापा ने बोल दिया तो
3: अरे तो
2: तरफ से मैं माफी मांग,
3: माफी मांगने से क्या होता है यार? ऐसी मैं माफी मांग रहा था उनसे, मैंने माफी मांगी है 50, वो नहीं मान रहे। तुमने यार पता नहीं उठा के क्या समझ रखा है मुझे।
2: अब मैंने क्या, आपने बोला कि मुर्गा बनाना है, SMS कर दो। मैंने गुस्सा तो सभी को आता है, ठीक से बात कर ले।
3: तुम मुझे बताओगे कि मैं कैसे बात कर लेता यार? नवनीत कमॉन यार, ऐसे नहीं होता है। मैंने माना कि चलो एक शो है, मुर्गा बनाते हैं उसमें, ये थोड़ी यार तुम उठा के किसी का भी नंबर दे दो, किसी का भी मुर्गा बनवा लो।
2: अब कुछ ज्यादा पापा ने बोल दिया तो
3: अरे तो
2: तरफ से मैं माफी मांग,
3: माफी मांगने से क्या होता है यार? ऐसी मैं माफी मांग रहा था उनसे, मैंने माफी मांगी है 50, वो नहीं मान रहे। तुमने यार पता नहीं उठा के क्या समझ रखा है मुझे।
2: अब मैंने

0: खराब नहीं हो गया क्या?
1: मेरा खराब नहीं हो गया, मुझे लग रहा है आप ही का थोड़ा हो गया है।
2: इस वक्त तुम्हारा ही मुर्गा बन रहा है, मेरे तुम्हारी फादर से अभी तक बात भी नहीं ऐसी अच्छे काम होते रहते हैं यहाँ पर। वैसे तुम्हारे फादर के वाकई में गुस्से वाले हैं।
1: नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, कभी कभी तो गुस्सा कर ही देते हैं।
2: चलो एक बार प्यार से मेरे साथ उनकी तरफ से बोल दो
1: कुकड़ुकू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। ये पटा 89.6 89.6।
4: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go on a ride. Club Mirchi.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
4: भाई, इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
7: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
8: हिट गाने
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
11: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

0: a rooftop, in a car, at a house party, or dancing with a boo at home, Club Mirchi is bringing the weekend to you. DJ Richard, you gotta give him a shout out. DJ Richard Official on socials. Let's go.
1: इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुख देने वाली चीज कौन और इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुख देने वाली चीज कौन और अब जब एक औरत से इतना दुख उठा लिया दूसरी औरत से थोड़ा सुख उठाना यार

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: जब भी ताल फिल्म देखती हूँ, ऐश्वर्या राय बच्चन के पीछे एक क्यूट लड़का दिखता है, और वो कौन है? शाहिद कपूर. बट शाहिद, इफ आई हैड टू आस्क यू अबाउट योर फिल्म जर्नी एंड योर फर्स्ट सॉन्ग, कौन सा था वो?
4: मेरा पहला गाना था, इट वाज इन इश्क इश्क, ऑब्वियसली द फर्स्ट सॉन्ग वाज दिस सॉन्ग वी डिड इन अ कैंटीन कॉल्ड लव लव लव करो, वेयर ऑल द गाइस आर ट्राइंग टू इंप्रेस द वुमेन.
3: शाहिद, व्हाट अ लवली डाइव इन नॉस्टैल्जिया. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल्डाल.
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bordal. Only on Mirchi, it's hot.

Dance away, dance away your blues with Club Mirchi.

0: Mirchi, fresh maal.
1: High voltage beats और unstoppable groove के साथ सुनो माशुका

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot. With Mirchi. Fresh Maal.
1: मस्ती मैडनेस और जंगल के एडवेंचर के वाइब्स के साथ सुनो वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक।

0: गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: 89.6, 89.6,
2: it's hot.

0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, ए, ए, क्या लगा रखा है ये सब? हाँ, क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।